0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

0: अभी बुधो प्या जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

0: हो पायो सी दिल में आ जो कोई न रहा मत आयो रब सा
1: अपना शहर मटियारी और मटियारी की
2: 91.6
3: It's 9 a.m. This time check is brought to you by
4: White Ish Beauty Cream Glowing Skin Jo Raaz A product by Biocon International Pakistan
5: Ab aap sunenge GAFM Network par KTN News
6: Brought to you by
7: Sona Yulia Granular Mitiye Jo
8: निसार अहमद घोड़े चयो आहे त सिंध असेंबली 6 भेरा ठहराउ मंजूर कया त कराची खे सिंध खां धार नथो करे सघिजे सिंध जा माण्हू जानियूं कुर्बान करे सघनि था पर धरती माउ जो विरांगो बर्दाश्त न कंदा सूबाई वज़ीर सैद गनी जो चवण आहे त खेसि हालतूं ख़राब थींदे नज़र अची रहियूं आहिनि सिंध जे विरांगे में सभ खां वॾी रुकावट पीपल्स पार्टी न पर सिंध जो अवाम आहे पीटीआई वारा तकरीरूं त कनि था पर हुननि सूबे जे विरांगे ख़िलाफ़ वोट न ॾिनो जमायत इस्लामी जो एक मेंबर आहे इहो बि वोट ॾियण बदिरां भॼी वियो सीनियर वकील शाह सरकराज़ी ऐं प्रोफेसर डॉक्टर सईद जाफर चयो त मुल्क पहिरियां ई घणो विरायल आहे वधीक तक़सीम जूं ॻाल्हियूं मुनासिब न आहिनि सभु तजुर्बा थी चुका आहिनि मुल्क वधीक कंहिं तजुर्बे जी सठ नथो सही सघे

सिंधी इम्कानी विरांगी ख़िलाफ़ सिंध जा वकील मैदान ते अची विया। सिंध वाते वक्त वाज़े पैगाम ॾेई छॾियो। सिंध यूनिटी डे वारे सॾ ते अदालती कार्रवाई जो बाइकॉट ऐं मुज़ाहिरा। कराची खां कश्मोर ऐं कारूंजर खां केटी बंदर ताईं को बि वकील कंहिं बि अदालत में पेश न थियो। कराची, हैदराबाद, मीरपुर ख़ास, शहीद बेनज़ीराबाद, सखर ऐं लाड़कन डिवीजन जे समूरनि नंढनि वॾनि अदालतनि में को बि केस न हलियो। एहतियाती मुज़ाहिरा ऐं धरणा।

पेट्रोलियम शयुनि जे अघनि में वाधि रूकजी न सघी। पेट्रोल 3.05 रूपया ऐं डीजल 5.37 रूपया फी लीटर महांगो। पेट्रोल जो नओं अघु 370.80 रूपया ऐं डीजल जो नओं अघु 398.80 रूपया फी लीटर थी वियो। पेट्रोलियम डीजल पारां जारी कयल नोटिफिकेशन मूजिबि पेट्रोल ऐं डीजल जा नवां अघ 11 सेप्टेम्बर लाइ हूंदा। हुकूमत पेट्रोलियम लेवी ख़त्म करण बाबति फ़ैसिलो न करे सघी। ॻाल्हियुनि जे ॿिए दौर दौरान जमायत इस्लामी खां वधीक 3 ॾींहनि जी मोहलत घुरी वरिती। जमायत इस्लाम जा लाहौर, पिशावर, कराची ऐं सखर समेत ॿियनि शहरनि में धरणा जारी। हाफिज़ नईमुल रहमान चयो आहे त हुकूमत पेट्रोलियम वज़ारत लाइ IPs सां ॻाल्हाइण लाइ मोहलत घुरी आहे। हुकूमत जो रवैयो दुरुस्त न थियो त लांग मार्च जो ऐलान कयो वेंदो। सॾु खां पोइ कारकुन सॼे मुल्क मां निकरंदा ऐं हुकुमराननि खे पोइ ते धिके छॾींदा। कराची यूनिवर्सिटी जे प्रोफेसर आरिफ साकी ते तशद्दुद वारे केस जो मुख्य जवाबदार गिरफ़्तार। पुलिस कार्रवाई कंदे नामज़द जवाबदार खे गिरफ़्तार करे वरितो। पुलिस जो चवण आहे त जवाबदार ॿिए शहर फरार थियण जो ख़दशो हो, खेस गिरफ़्तार करे वरितो आहे। गुज़िरियल ॾींहं केस में नामज़द ॿिनि गार्डनि खे पिण गिरफ़्तार कयो वियो हो।

0: सोलर ऐं बैटरी ते डायरेक्ट हले।
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो जीए एफएम 91.6।
3: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट यू बाय
4: बैंक इस्लामी लाया, पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग।
5: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है एनपीएस 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
6: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
7: तालीमुल कुरान, कुरान मजीद के लफ्जी तर्जमा और तफसीर पर मुबनी प्रोग्राम, मुकर्रर फरहत हाशमी।
8: नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फऔज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी व हलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। क़ाला, जवाब देते हैं ताबीर के लिए। कहते हैं लायाती कुमा तामुन तुर्ज़क़ानी ही, नहीं आता तुम्हारे पास खाना जिसे तुम खिलाए जाते हो, इल्ला नब्बअतुकुमा बितावीली, मगर मैं बता दूंगा तुमको उसकी तावील यानी ख्वाब की ताबीर, कबला यातिया कुमा, इससे पहले के खाना आए तुम्हारे पास। खाने का लगता है वक्त मुकर्रर था। मिस्री कौम काफी कल्चर्ड थी, टाइमिंग्स थे खाने के। गैर तरक्की याफ्ता लोगों के कोई टाइमिंग्स नहीं होते, जब मिले जो मिले जिस हाल में मिले खाना शुरू कर देते, सारा दिन खाने का। लेकिन तरक्की याफ्ता कौमों का अमूमन एक शार है कि खाने का वक्त है, बस अब खाना है, आगे पीछे नहीं, इन बिटवीन नहीं। कहा कि जो खाने का वक्त है और खाना जब आएगा तो उससे पहले पहले मैं तुमको ख्वाब की ताबीर बता दूंगा, लेकिन ज़ालिकुमा मिम्मा अल्लमनी रब्बी, ये उसमें से है जो मेरे रब ने मुझे इल्म दिया है। खुद क्रेडिट नहीं लेते, ये नहीं कहते कि ये मेरा कमाल है, मेरी काबिलियत है, ये मेरे रब ने मुझे इल्म दिया है, मेरे रब ने मुझे सिखाया है। तबलीग करने वाले को अपने हर काम का क्रेडिट अपने रब को देना चाहिए, खुद नहीं लेना चाहिए। और इस बात की भी तरदीब थी कि मैं कोई काहन नजूमी नहीं हूं, मैं गैबदान नहीं हूं, मेरा इल्म मेरे रब का दिया हुआ है। और फिर साथ ही कुछ और अच्छी बातें बताते हैं, एक मौका गनीमत जानते हैं कि कोई मुतवज्जे हुआ है, अब उसकी हकीकी खैरखाही कर दी जाए। हम लोगों को मुतवज्जे किए बगैर उनको सुनाना शुरू कर देते, लेकिन यहां वो क्या करते, खाने की बात करते हैं, फिर शॉर्ट टाइम की बात करते हैं, फिर अपनी कोई बड़ाई नहीं जताते, कोई डेंगे नहीं मारते, और साथ ही दूसरे को सिर्फ ताबीर नहीं, तब इन्नी तरक्तु मिल्लत कौमिन, मैंने छोड़ दिया एक ऐसी कौम के तरीके को, ला युमिनून बिल्ला, जो अल्लाह को नहीं मानती, वहुम बिलाखिरत हुम काफिरून, और वो आखिरत को भी नहीं मानती। इससे क्या पता चलता है कि मिस्री कल्चर क्या था, मिस्री मजहब क्या था, एक एथीस्ट कल्चर था, एक काफिराना कल्चर था। आखिरत को ना मानना एक दहरियत की अलामत है ना, मा युहलिकुना इल्लद दहर, फिर हम इसके बाद नहीं उठेंगे। और ये भी को मॉडर्न होना नहीं है, ये भी 4000 पहले की आफत।

0: It's 9:45 AM. This time check is brought to you by
1: Bank Islamni Laya, Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
2: This program is brought to you by
1: Bank Islamni Laya, Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
3: Pakistan ki zyada tar zameenein phosphorus ki kami ka shikar hain. Isiliye sona laya hai NPS. Teen ki taqat ke saath. इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। तीन की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
4: आप सुन रहे हैं जी ए एफ एम 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: It's 10 a.m. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: Brought to you by
4: Sona Yuya Granular. Mitiya Jo.
5: दुरुस्त न थियो त लॉन्ग मार्च जो ऐलान कयो वेंदो सिंध खां सॾु खां पोइ कारकुन सॼे मुल्क मां निकरंदा ऐं हुकुमराननि खे पोइ ते धिके छॾींदा वफ़ाक़ी हुकूमत जो नवनि सूबनि वारे मामले ते क़ौमी असेंबली ऐं सेनेट में बहस करण जो ऐलान पार्लियामेंटी मामलनि वारे वफ़ाक़ी वज़ीर तारिक फज़ल चौधरी चयो आहे त सूबनि वारे मामले ते बहस जो असल हंधु पार्लियामेंट आहे अक्टूबर में क़ौमी असेंबली ऐं सेनेट जे इजलासनि दौरान नवनि सूबनि वारे मामले ते बहस करायो वेंदो इस्लामाबाद खे धार सूबो ठाहिण ते का बि ॻाल्हि ॿोल नाहे थी राजधानी वारे शहर खे सूबो ठाहिण बदिरां उते हिकु नओं गवर्नेंस मॉडल ठाहिण जूं तयारियूं हली रहियूं आहिनि मीरपुर खास भरसां जमड़ाव केनाल मां निकरंदड़ शाख जो रेगुलेटरी टुटी पियो मुख़्तलिफ़ हंधनि ते घारा शाख में पाणीअ जो दॿाउ पाणी टंडो आदम रोड ते पहुची वियो ॻोठ ज़ाहिदाबाद शेर मोहम्मद थईम ऐं उनड़ ॻोठ में बि दाख़िल ॻोठणनि मूजिब आपाशी अमलो शाख खे बंदि करण लाइ पहुतल आहे पर नॉन टेक्निकल हुजण सबबि शाख बंदि न पई थिए डीसी मीरपुर खास पारां असिस्टेंट कमिश्नर खे फौरी तौर अमलो वठी शाख खे बंदि कराइण जी हिदायत जेकमाबाद में लेडी कांस्टेबल पारां मुबैना तौर ज़हर पी आपघात जी कोशिश होल्डिंग कैंप ते ड्यूटी दौरान कांस्टेबल ज़ैनब लाशारी मुबैना ज़हरीली शइ पी आपघात जी कोशिश कई पुलिस जो चवण आहे त लेडी कांस्टेबल खे सिविल अस्पताल मुंतकिल कयो वियो जेका अञा ताईं होश में न अची सघी आहे संदसि हालत ख़तरे खां ॿाहिरि आहे ऐं उबावड़ो भरिसां गुडू लिंक रोड ते पुलिस ऐं ॾुहारियुनि में मुबैन मुक़ाबले दौरान ॿ ॾुहारी रशीद अहमद मज़ारी ऐं ज़फ़र अली मज़ारी ज़ख़्मी हालत में गिरफ़्तार इलाइक़े में चौबोल आहिनि त गुज़िरियल राति उन्हनि ॿिन्ही चोरनि जूं मेहूं चोरी कयूं हुयूं जिन खे उबावड़ो पुलिस गिरफ़्तार करण बाद हाफ़ फिराए कयो आहे
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
6: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है सुनते रहो GAFM 91.6
7: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा तीन की ताकत मिले फसल भरपूर खिले
8: हक सच जो आवाज गीत संगीत जो आवाज जी हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज ॿुधंदा रहो

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।
2: इट्स 10:30 AM। दिस टाइम चेक इज ब्रॉट टू यू बाय।
3: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्च अपनाए। आर्च ब्यूटी क्रीम, एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स, एक्नी एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडियंट, स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो। आर्च ब्यूटी क्रीम।
4: खूबसूरती है जो असल राज, सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवां जी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ बिन डीहन में। डार्क स्पॉट्स के करे खत्म और दिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर डी जो शो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
0: अभी बुधो प्या जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

0: अभी बुधोपिया जी ए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंधु जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते बसे नूर मुझो तो
0: सिंधु जो आवाज बुधंदा रहो।
2: It's 10:45 AM. This time check is brought to you by
3: Bank Islamni Laya, Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
0: अभी बुधो प्या जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते बसे नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल गही मारू डुंगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज में आहे नकी कड़ो नहीं।
2: अल्लाह अल्लाह।

0: मठियारी की जियो से।
1: It's 11 a.m. This time check is brought to you by
2: White Ash Beauty Cream, glowing skin jo raaz, a product by Biocon.
3: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
4: brought to you by
5: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
2: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
3: बैंक इस्लामी लाया, पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग।
4: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बदलता रहो।

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खिते की बनी है आवाज।
0: जीए एफएम नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।

0: It's 11:15 a.m.
1: This time check is brought to you by
2: White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
3: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
4: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
5: काश हमारे पास जैसी गाड़ी होती चमचमाती भी।
6: चलो दिल को संभाल के रखो दुल्हन, ये ना हो कि गाड़ी के चक्कर में तुम्हारा ये ड्राइवर के हाथ से निकल जाए।

दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बतो यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: It's 11:30 AM. This time check is brought to you by.
1: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्च अपनाएं. आर्च ब्यूटी क्रीम, एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स, एक्नी एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडियंट, स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो. आर्च ब्यूटी क्रीम.
2: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं. इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ. इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले. इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा. 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले.
1: अब आपकी खूबसूरती का फैन बाइट एज ब्यूटी क्रीम.

0: तू तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज।
3: ओ पिता जा पिताई पिता देव से नूर मुझो तो
2: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

0: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: AM This time check is brought to you by
2: Bank Islamani Laya, Pakistan ka pehla sharia compliant gold based financing.
3: Zindagi guzaryo etmad sa Quran ke samji budhanda raho Dr. Farhad Hashmi jo program Taleemul Quran rozano subuh 9:05 te sirf GFM 88 network te.
4: This program is brought to you by
2: Bank Islamani Laya, Pakistan ka pehla sharia compliant gold based financing.
5: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज।
6: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
5: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
0: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज
1: GFM 91.6।
2: It's 12 PM. This time check is brought to you by
3: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Diya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
4: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
5: brought to you by
6: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान

ईरानी परदेही वजीर अब्बास इराकचे जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर सां फोन ते राबतो किते जी सूरत हाल समेत अमन वारनि क्वेश्चन ते ॻाल्हियूं ईरानी सरकारी मीडिया मूजिबि इन अॻवाणनि किते में वधंदड़ छिकताण सबबि इलाक़ाई जे अमन ऐं इस्तक़ाम खे लाॻापियल ख़तनि ते ॻाल्हियूं कयूं। ईरानी परदेही वज़ीर सऊदी फैसल बिन फरहान सां बि फोन ते राबतो कयो किते जी सूरत हाल ख़ासि तौर ते यमन में थींदड़ वाकियनि ते ॻाल्हियूं कयूं वयूं। यमनी हुसैन पारां सामुंडी गुज़रगाह बाबत अल मंदब ते कब्ज़ो करण जी दावा आलमी वापार में वॾी रंडक पैदा थियण जो ख़दशो। यमनी हुसैन मूजिबि बाब अल मंदब वेझो अल मरमी फौजी अॾे ऐं ज़िक्र बेट ते कंट्रोल करे वरितो आहे। हाणे बाब अल मंदब खे बंदि करण जो इख़्तियार बि हुसैन वटि आहे।

केपी जेल है के कोर में सिक्योरिटी फोर्सेज जो ऑपरेशन चार दहशतगर्द मारजीवेल दहशतगर्द में अफगान खारजी अब्दुल्ला भी शामिल जरियन मौजूद मारजी वेल अफगान दहशतगर्द अब्दुल्ला साद वालिद गुलाम गोसाली अफगानिस्तान के सूबे लोगर जो रहवासी हो खारजन से गड कम कंदो हो। सिंध के इम्कानी विरांगे खिलाफ खैरपुर डिस्ट्रिक्ट बार पारा अदालती कार्रवाई जो बायकाट वकील अगवान सिंध के टोड़ने वाली साजिश के कदें भी कामयाब थियण न डींदासीं सिंध एक है हमेशा एक रांदी सिंध के विरहण वारे समूर बयान की मजम्मत क्यूं था।

0: रियासिटीअ में महीनो अॻु नारीअ जे कारे इल्ज़ाम हेठि क़तल थियण जो इंकशाफ़। जवाबदार मामो थाणे ते पेश। ॻोठ आडो खान ॾेहो में मसमात नेहा खे गुटा ॾेई क़तल कयो वियो हो। जवाबदार मामे राजा थाणे ते पहुची एतराफ़ कयो त हुन नारीअ खे संदसि वारिद अकरम ॾेयाव सां गॾिजी नौजवान अला ॾिनो सां कारी करार ॾेई गुटा ॾेई क़तल कयो। पुलिस सरकारी मुदत में केस दाख़िल करे वधीक जवाबदारनि जी ॻोल्हा शुरू करे छॾी।
1: लाइट एंड ग्लू है पाकिस्तान की बेस्ट चॉइस। क्यों? अल्ट्रा एचडी ग्लू, हेल्दी स्पॉट फ्री स्किन, सन प्रोटेक्शन।
0: घोटकी में ॻोठाणे ते तशद्दुद ऐं तज़वील वारे केस में गिरफ़्तार एसएचओ ज़मानत रद्द थियण ते गिरफ़्तार। घोटकी जी अदालत अॻूणे एसएचओ काबिल भयो जी ज़मानत रद्द करे गिरफ़्तार करण जो हुकुम ॾिनो। पुलिस काबिल भयो खे अदालत मां गिरफ़्तार करे जेल मुंतकिल कयो।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज, आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: It's 12:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream, Asli Glow Har Niya Josho, a product by Biocon International Pakistan.
3: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
4: सिंध के माथे का झूमर
5: DFM 88 नेटवर्क,
4: सिंध की आवाज़।

के हो तो आवाज भी सिंह की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंह की आवाज।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर ना रहो, उधर ना।

0: It's 12:45 PM. This time check is brought to you by
1: Bank Islam ne laya Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
2: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले। पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
3: This program is brought to you by
1: Bank Islam ne laya Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
4: Abhi Budhopya, GA Hyderabad Matyari, FM 91.6, Sindh Jo Awaaz.
5: O pita ja pitai, pita te vasai noor mujho to.
4: Sindh Jo Awaaz, budhanda raho.

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल गई मारू डुगर खां भी डाढा नियर नहीं का चीज में आहे सकी करो नहीं।

0: सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: It's 1 p.m. This time check is brought to you by
2: White Ish Beauty Cream, glowing skin jo raaz, a product by Biocon International Pakistan.
3: अब आप सुनेंगे GFM नेटवर्क पर KTN News,
4: brought to you by
5: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाई।
6: अंदर का रुगो सऊदी अरब के यमन में हथफन बाबत जान फराम कंदो वाशिंगटन जो हुसैन खिलाफ।
7: पोएट्री इट इज अराउंड अस, द पोएट्री ऑफ क्लैरिटी।

विरिया सिटी में महीनो अग नारी जे कारे इल्ज़ाम हेठ कतल थियण जो इंकशाफ। जवाबदार मामो थाणे ते पेश। ॻोठ आडो खान ॾेहो में मसमात नेहा खे घुटा ॾेई कतल कयो वियो हो। जवाबदार मामे राजा थाणे ते पहुची एतराफ़ कयो त हुन नारीअ खे संदसि वालिद अकरम सां गॾिजी नौजवान अलालिनो सां कारी करार ॾेई घुटा ॾेई कतल कयो। दादू में मुबैना पुलिस मुक़ाबले में मारिजी वियल नादिर जमाली वारे केस जो सिंध हाई कोर्ट फैसलो ॿुधाए छॾियो। वारसनि जी दरख़्वास्त ते 15 अहलकार ख़िलाफ़ केस दाख़िल करण जो हुकुम। 2 DSPs ऐं 3 SHO समेत 15 अहलकारनि ख़िलाफ़ FIR दाख़िल करण जो हुकुम। अॻोणे DSP सुल्तान चांडो, इंस्पेक्टर कुर्बान कमराणी समेत ॿियनि खे नामज़द करण जो हुकुम। 8 महीना अॻु पुलिस ॼाणायो हो त नादिर जमाली ॾोहारी फायरिंग में मारिजी वियो हो।

नओं दंबालो में आपाशी सब डिवीजन के पुछड़ी में पानी खोट खिलाफ आबादगारन जो एतजाज। आबादगारन चयो तो समय एकड़न ते बीठल फसल पानी न मिलण सबब सड़ी रहो आहे। गुजरियल बिन महीनन का जर्स ए बंगार शाख के पुछड़ी में पानी नाहे पोतो इख्तियारियूं नोटिस वठनि।

घोटकी में गोठाणे ते तशद्दुद ऐं तज़लील वारे केस में गिरफ़्तार SHO ज़मानत रद्द थियण ते गिरफ़्तार घोटकी जी अदालत अॻूणे SHO काबिल भयो जी ज़मानत रद्द करे गिरफ़्तार करण जो हुकुम ॾिनो। पुलिस काबिल भयो खे अदालत मां गिरफ़्तार करे जेल मुंतकिल कयो।

0: し、सांगड़ वेझो नवाबशाह रोड ते हादसो, ब नौजवान फोत। रतियाणी वेझो रोड ते बीठल बांसनि सां भरियल ट्रैक्टर ट्राली सां पोयां ईंदड़ कार टकराइजी वई। हादसे जे नतीजे में कार सवार ब नौजवान चार चकवासी राणा साकिब ऐं टेवीह चकवासी नोमान थडे ते ई फोत थी विया।
1: Czekajcie, regulujcie. Chcemy data, chcemy prawa, chcemy data, chcemy prawa. Czas na brawo.
0: ऐं पोलैंड में 30 खां वधीक रोबोट्स जो एहतियाज। एआई बाबति मज़बूत कानून साज़ी करण जो मुतालबो। वाट्सएप में डिजिटल अफेयर्स जी वज़ारत ॿाहिरां 30 खां वधीक रोबोट्स एहतियाज कयो। एहतियाज कंदड़ रोबोट्स जे हथनि में प्ले कार्ड्स ऐं झंडा हुया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बाबति कानून साज़ी करण जो मुतालबो कयो।
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी, सुनते रहो GAFM 91.6।
4: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।

दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बत व यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुँचे। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
3: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GAFM 88 नेटवर्क ते।
4: अभी बुधो प्या GA हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज।
5: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
4: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज
1: GFM 91.6
2: It's 2 p.m. This time check is brought to you by
3: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Haddi Joshu. A product by Biocon International Pakistan.
4: अब आप सुनेंगे GAFM Network पर KTN News. आप सुन रहे थे अब आप सुनेंगे GAFM Network पर KTN News.
5: एक करारदाद पास न करें ये पहले था अब उन्होंने क्या कर दिया कहा कि जी पास भले कर दे लेकिन सदर उस पर दस्तखत नहीं कर सकते जब तक 2/3 मेजोरिटी से कोई सुबह उस पर रेजोल्यूशन ना पास करे मेरा ख्याल है ये बहुत गलत तरमीम थी ये कैसे हो सकता है कि सूबाई असेंबली नेशनल असेंबली की पास किए हुए कानून को सूबाई असेंबली रिजेक्ट कर दे ये तो जियाउल हक ने इस आईन के अंदर ये अजीबो गरीब शिक डाल दी कि नेशनल असेंबली पास कर ले उसके बाद सूबा जो है वो उसको रिजेक्ट कर दे ये गलत है मेरा ये ख्याल है कि इसको दुरुस्त होना चाहिए
6: सूबन जी सरहदन बाबत कौमी असेंबली आईनी तरमीम नथी करे सके तरमीम लाए सूबा असेंबली मां बाप भांगे टे जी अक्सरत जरूरी है ज़ियाउल हक़ अठी तरमीम ज़रिए आईन के तब्दील कयो हो जैंखे दुरुस्त थियण घुर्जे सूबन जे सरहदन में तब्दीली बाबत कौमी असेंबली तरमीम नथी करे सघे सदर बे तरमीम ते सूबे जी मंजूरी बिना सही नथो करे सघे कराची में मीडिया सां ॻाल्हाईंदे वॾे वज़ीर सैद मुराद अली शाह चयो आहे त जेकॾहिं कौमी असेंबली सिंध जे विरहाङे बाबति को ठहराउ मंज़ूर कयो त सिंध असेंबली पहिरीं अहिड़े ठहराउ खे रद्द करे चुकी आहे सिंध जे माण्हू बि पंहिंजो फ़ैसिलो ॿुधाए छॾियो आहे ऐं असां सिंध जे आवाम सां गॾु बीठल आहियूं यमनी ओसियन पारां सामूंडी गुज़रगाह बाबति अलमंदब ते कब्ज़ो

पेली ऐं धरणो मक़तूल 15 सालनि जे शागिर्द मोहम्मद उमर लाशारी ते जवाबदारनि पुलिस अहलकार समद बंगलाणी अब्दुल जब्बार सेठा नवाज़ लहर ऐं नदीम लोहर खे सज़ा ॾियारण लाइ रैली कढी धरणो हयो। मुज़ाहिरीन मूजिब जवाबदार मक़तूल नौजवान जे वारसनि खे केस तां हथ खणाइण लाइ धमकाए रहिया आहिनि। ख़ानदान खे तहफ़ुज़ फराहम करे इंसाफ़ कयो वञे।

0: my data. Te my czekajcie, regulujcie. Te my data. Te my prawa. Te my data. Te my prawa. Czas na prawo.
1: अपोलो मिलिट्री खां वधीक रोबोट जो एतिजाज ए आई बाबति मज़बूत कानून साज़ी करण जो मुतालबो वाट्सएप में डिजिटल अफेयर्स जी वज़ारत ॿाहिरां 30 खां वधीक रोबोट्स एतिजाज कयो एतिजाज कंदड़ रोबोट्स जे हथनि में प्ले कार्ड्स ऐं झंडा हुया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बाबति कानून साज़ी करण जो मुतालबो कयो
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
3: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है सुनते रहो GAFM 91.6
4: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा 3 की ताकत मिले फसल भरपूर खिले
5: हक सच जो आवाज़ गीत संगीत जो आवाज़ GA हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज़ ॿुधंदा रहो

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज।
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: It's 2:30 PM. This time check is brought to you by
4: Heme Diamond Glow Bleach Cream, जो डीप क्लीन करे और दे चार गुना ब्राइटनेस, चमक ऐसी डायमंड स्किन जैसी। Heme Diamond Glow Bleach Cream.
5: This program is brought to you by
6: Bank Islamini Laya, पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग।
7: खूबसूरती है जो असल राज, सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार, सिर्फ बिंडीहन में। डार्क स्पॉट्स के करे खत्म और दिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर डी जो शो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
8: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा, और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुँचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
9: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज।
10: ओ पिता जा पिताई पिता ते बसे नूर मुझो तो
9: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो
11: मैं जय जान।

0: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है। सुनते रहो GAFM 91.6।
1: सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुँचे। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:55 ते सिर्फ GAFM 88 नेटवर्क ते।
3: अभी बुधो प्या GA हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज।
4: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
3: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।
2: It's 3 p.m. This time check is brought to you by
3: White-ish Beauty Cream Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
4: अब आप सुनेंगे GAFM Network पर KTN News.
5: Brought to you by
6: Sona Urea Granular मिट्टी जो
7: संगीत के साथ एक करारदाद पास न करें, ये पहले था। अब उन्होंने क्या कर दिया, कहा कि जी पास भले कर दे लेकिन सदर उस पर दस्तखत नहीं कर सकते जब तक 2/3 मेजोरिटी से कोई सुबह उस पर रेजोल्यूशन ना पास करे। मेरा ख्याल है ये बहुत गलत तरमीम थी। ये कैसे हो सकता है कि सूबाई असेंबली नेशनल असेंबली की पास किए हुए कानून को सूबाई असेंबली रिजेक्ट कर दे? ये तो जियाउल हक ने इस आईन के अंदर ये अजीबो गरीब चीज डाल दी कि नेशनल असेंबली पास कर ले उसके बाद सूबा जो है वो उसको रिजेक्ट कर दे। ये गलत है, मेरा ये ख्याल है कि इसको दुरुस्त होना चाहिए।
8: सूबन जे सरहदन बाबत कौमी असेंबली आई तरमीम नथी करे सके। तरमीम लाइ सूबे असेंबली मां बाबा हंगे टे जी अक्सरियत जरूरी आहे। ज़ियाल कठे तरमीम खे दुरुस्त थियण घुर्जे। सूबन जे नथी करे सघे सूबे जी मंजूरी। कराची में मीडिया सां ॻाल्हाए मुराद अली शाह चयो आहे त टांगे बाबति को ठहराउ मंजूर रद्द करे चुकी आहे। सिंध जे माण्हुनि बि पंहिंजो फैसलो ॿुधाए छॾियो आहे ऐं असां सिंध जे आवाम सां गॾु बीठल आहियूं। सामुंडी गुजरगाह कब्जो करण जी दाम जो खदशो। जमनी हुसैन मौजूद बाबल अलमरी फौजी अॾे ऐं रज़्क बेट ते कंट्रोल।

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

दिन हर पहर जिंदगी की लहर जीएफएम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम रोजाना सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
2: It's 3:45 PM. This time check is brought to you by
0: Bank Islamani Laya, Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
3: Sona Laya hai NPS 3 ki taqat ke sath. Iske har dane mein teenon ajza ki yaksa maujoodgi se fasal ko zyada se zyada fayda pahunche. Mile fasal bharpoor khile.

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: brought to you by
2: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाई।
3: मेरा ख्याल है ये बहुत गलत तरमीम थी। ये कैसे हो सकता है कि सूबाई असेंबली नेशनल असेंबली की पास किए हुए कानून को सूबाई असेंबली रिजेक्ट कर दे। इतने इस आईन के अंदर ये अजीबो गरीब खिक डाल दी कि नेशनल असेंबली पास कर ले उसके बाद सूबा जो है वो उसको रिजेक्ट कर दे। ये गलत है, मेरा ये ख्याल है कि इसको दुरुस्त होना चाहिए।
4: सूबन के सरहदन बाबत कौमी असेंबली आइनी तरमीम नथी करे सके। तरमीम लाए सूबाई असेंबली मां ब भांगे टे की अक्सरियत जरूरी है। जाल कठी तरमीम जरिए आइन के तब्दील थियण घुर्जे। सूबन के सरहदन में तब्दीली बाबत कौमी असेंबली तरमीम नथी करे सके ते सूबे की मंजूरी बिना सही नथो करे सके। कराची में मीडिया से गालाईंदे वडे वजीर सैयद मुराद अली शाह चयो आए ते जेकडे कौमी असेंबली सिंध के विरहांगे बाबत को ठहराव मंजूर कर तो सिंध असेंबली पे अड़े ठहराव के रद्द कर चुकी है। सिंध के मानून भी पैंजो फैसलो बुधाए छो है। असा सिंध के आवाम से गड बीठल आय। वजीर आजम की सदारत हेठ धमकान की हिदायत माली मदद करण जो भी फैसलो शहबाज शरीफ चो है। पाकिस्तान के जरिए शहर के आलमी मंडी तई रसाई यकीनी बनाने ला कदम कया वन सूबन से भी राबतन के बेहतर किया वे। यमनी हुसैन पारा सामुंडी गुजरगाह बाबुल मंदब ते कब्जो करण जी दावा। आलमी व्यापार में वधिक रंडक पैदा थियण जो खदशो। यमनी हुसैन मूजिब बाबुल मंदब वेझो अलमरी फौजी अडे ए जकर बेट ते कंट्रोल करे वरतो आहे। हाणे बाबुल मंदब के बंद करण जो इख़्तियार

0: शांति दौर में खत्म थियण लाइ पुरउमीद। डोनाल्ड ट्रम्प चयो आहे त ईरान जंग ड्रिघे मुद्दे ताईं जारी रहण जो इम्कान नाहे। क़ाइदे आज़म मोहम्मद अली जिना जी 78वीं वर्सी सिंध जे गवर्नर ऐं वॾे वज़ीर जी मज़ार काए ते हाज़िरी। भेटा पेश वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ चयो आहे त अॼु क़ौम पंहिंजे अज़ीम अॻवान खे ॾिठी। क़ाइदे आज़म दुनिया जो हिकु अज़ीम मोड़ियो। वफ़ाक़ी घरू वज़ीर मोहम्मद मोहसिन नक़वी चयो आहे त क़ाइदे आज़म खे क़ौम हिकु नज़रियो शऊर ऐं हिकु आज़ाद रियासत ॾिनी। वॾे वज़ीर सैद मुराद अली शाह चयो त मुल्क जी तरक़ी ऐं खु़शहालीअ लाइ क़ाइदे आज़म जे ॾिसल रस्ते ते हलणो पवंदो। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीटीआई जी 27 सितंबर ते ऐलानियल लॉन्ग मार्च खिलाफ़ दरख़्वास्त ते ॿुधणी। एडवोकेट जनरल केपीके अदालत में पेश। दरख़्वास्त जी मुख़ालफ़त पीटीआई ऐं केपीके जे वॾे वज़ीर खे धुर बणाइण जी सदा। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर जो केपीके जे चीफ सेक्रेटरी आईजी खे हल्फी बयान जमा कराइण जो हुकुम। केपीके जे इलाइक़े कोम में सिक्योरिटी फोर्स जो ऑपरेशन 4 दहशतगर्द मारिजी विया। मारिजी विया दहशतगर्दनि में अफ़गान ख़ारिजी अब्दुल्ला बि शामिल। ज़रियनि मूजिब मारिजी वियल अफ़गान दहशतगर्द अब्दुल्ला वलिद ग़ुलाम कोस अफ़गानिस्तान जे सूबे लोगर जो रहवासी हो। ख़ारिजियुनि सां गॾु कम कंदो हो। मीर रज़ा केस जे जांच कंदड़ अदालती कमीशन संदसि कारोबारी साथी एहसान अनस शमसीअ खे बि तलब करे वरितो। मैनेजर शहरियार ऐं अकाउंटेंट उमेर खे बि नोटिस जारी। कमीशन मीर रज़ा जे मुबैना कर्ज़दार असद अली भट उस्मान बोज़ई ऐं हसन तनोलीअ खे बि नोटिस जारी। अदालती कमीशन जो चवणो आहे त आस जो बयान वीडियो सभिनी फर्ज़नि खे 15 सितंबर ते पेश थियण लाइ नोटिस जारी करे छॾिया। तालीम खाते में पीएसटी ऐं जीएसटी वेटिंग उमीदवारनि बाबति इजलास तलब। सिंधी असेंबली जे स्पेशल कमेटीअ जो बियो इजलास 15 सितंबर ते थींदो। इजलास में इंतज़ार कंदड़ उमीदवारनि जे भर्ती बाबति फ़ैसिला कयदार शाह अली खुर्शीद ऐं ॿिया शिरकत कंदा। इस्लामाबाद में पीटीआई जो वफ़द मौलाना फज़ल रहमान जी रिहाइशगाह ते पहुची वियो। पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गोहर ऐं क़ौमी असेंबली जो अॻूणो स्पीकर असद केसर वफ़द में शामिल। ज़रियनि जो चवणो आहे त पीटीआई जे यूएआईएफ जे सरबराह सां मुलाक़ात शेड्यूल आहे। क़ौमी अवामी तहरीक पारां सिंध विरहाइण जी साज़िश ख़िलाफ़ मोहबत सिंध रैलियूं कढण जो ऐलान। नयाज़ लतीफ़ अली जो जी सदारत में तहरीक जे स्टैंडिंग कमेटीअ जो इजलास। इजलास में सिंध जी वहादत ख़िलाफ़ साज़िशनि ऐं सिंध जे वसीलनि बाबति मामलनि ते गौर वीचार कयो वियो। 20 सितंबर ते सांगड़, 26 सितंबर ते बदीन ऐं 4 अक्टूबर ते ठठे में रैलियूं कढण जो ऐलान। नयाज़ लतीफ़ अली जो चयो आहे त वफ़ाक़ी हुकूमत सिंध जे वहादत बाबति बहस कराइण बदिरां सिंध खे पाणी न मिलण ते बहस कराए। सिंध में मोटरवे छो नथो ठहिरायो वञे? ठहिराउ बदिरां जोड़ण जूं ॻाल्हियूं थियण घुर्जनि। नवनि सूबनि या इंतज़ामी यूनिटनि जे नाले में सिंध जो विरहाङो क़बूल नाहे। जेकमाबाद मां 22 ॾींहं अॻु अगवा थियल नारी खे पुलिस पारां बाज़ियाब कराइण जी दावा। मेडिकल लाइ अस्पताल मुंतकिल। पुलिस मूजिब नारी समरीन कोराई जो चवण आहे त जवाबदार मुआवना बंगलाणी मूंखे बेहोशी वारी हालत में अगवा करे कराची में कैद करे रखियो हो। जवाबदार शादी जो डटो ॾेई ब्लैकमेल कंदो रहियो। हाणे बे हयातीअ खे ख़तरो आहे। जवाबदार पारां इल्ज़ाम रद्द। पुलिस मूजिब नारी खे सुभाणे अदालत में पेश कयो वेंदो।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है। सुनते रहो GAFM 91.6।

0: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: या मोहम्मद।

0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
2: आप सुन रहे हैं DAFM नेटवर्क पर योम दिफाई पाकिस्तान की पुरजोश नशरियात।
3: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीट्स और जदीद माइक्रोबीट्स फॉर्मूला आपकी

0: को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करें फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
1: खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी हाने अवां के परेशान थियण जी का भी जरूरत न आहे। जेकरे तव्हां कंहिं भी बीमारी में मुब्तला आहियो या बीमारीअ जो इलाज हैदराबाद शहर में सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक ते कयो वेंदो आहे। सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक हैदराबाद में होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अली खान, नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी ऑफ पाकिस्तान, होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन, सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हस्पताल नवाबशाह, इलाज होम्योपैथिक तरीके से कंदा आहिने। अल्हम्दुलिल्लाह केतरा ही मरीज सेहतयाब थी चुका आहिने। आवां बे एक दफो आजमाए दिसो। चेकअप फीस सिर्फ 300 रुपया। क्लिनिक में मेडिकल स्टोर की सहूलत पिण मौजूद है। क्लिनिक जो टाइम आईडी है हर छंछर का खमीस ताई सुबह जो 10 वगे का शाम 5 वगे ताई जुमो मोकला आहे। एड्रेस सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक, बदीन स्टॉप रोड, पुरानी सब्जी मंडी, एमसीबी बैंक जे सामू, नया पुल, हैदराबाद। वधिक मालूमात जे लाए राब्तो करियो 0306244770।
2: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
3: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
2: GAFM नेटवर्क,
3: सिंध की आवाज़।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी एफएम 91.0 सिंध जो आवाज। बुधंदा रहो, बुधंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए एक
2: सिंध की आवाज।
3: बेस्ड फाइनेंसिंग
4: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ
5: पाकिस्तानी लिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा, वो मिले ज्यादा।

0: आप सुन रहे हैं GAFM नेटवर्क पर योम दिफाई पाकिस्तान की पुरजोश नशरियात। पाक फौज को सलाम।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर
2: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
3: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
2: GAFM नेटवर्क,
3: सिंध की आवाज।

0: अभी बुधो प्यार जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंधु जो आवाज
1: ओ पिता जा पिताई पिता देव से नूर मुझो तो
0: सिंधु जो आवाज बुधंदा रहो।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: GA FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: It's 5 PM. This time check is brought to you by
1: White-ish Beauty Cream Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News
3: brought to you by
4: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाई.
5: अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप यमनी हुसैन खिलाफ कार्रवाई करण वाले सऊदी अरब की दरख्वास्त रद्द करे छी. अमरीकी न्यूज वेबसाइट एग्जेविस मूजिब सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान सदर डोनाल्ड ट्रंप से फोन

0: राबतो करे हुसैन खिलाफ़ कार्रवाई की दरख्वास्त कई हुई जेका ट्रंप रद्द करे छॾी आहे। ट्रंप इंतजामिया मूजिब अमरीका रुगो सऊदी अरब के यमन में हदफन बाबत जान फराम कंदो। वॉशिंगटन जो हुसैन खिलाफ़ इन वक्त फौजी कार्रवाई जो इरादो न आहे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान जंग पंहिंजी सदारती दौर में ख़त्म थियण लाइ पुरोमेन। डोनाल्ड ट्रंप चयो आहे त ईरान जंग डिघे मुदे ताईं जारी रहण जो इम्कान नाहे।
1: लाहौल हक में आखिरी तरमीम में आईन को बदला था और उसमें होता था कि नेशनल असेंबली सूबों की अगर उन्होंने बाउंड्रीज चेंज करनी है उसका कोई आईनी तरमीम से ही हो सकती है, उसके अलावा अगर ऐसी कोई आईनी तरमीम करनी है तो वो पास नहीं कर सकती जब तक सूबा उसके हक में उस डिवीजन के या जो भी हक में दो तिहाई असेंबली के साथ एक करारदाद पास न करे। ये पहले था, अब उन्होंने क्या कर दिया, कहा कि जी पास भले कर दे लेकिन सदर उस पर दस्तखत नहीं कर सकते जब तक टू थर्ड मेजोरिटी से कोई सुबह उस पर रेजोल्यूशन ना पास करे। मेरा ख्याल है ये बहुत गलत तरमीम थी। ये कैसे हो सकता है कि सूबाई असेंबली नेशनल असेंबली की पास किए हुए कानून को सूबाई असेंबली रिजेक्ट कर दे? ये तो जियाउल हक ने इसका आईन के अंदर ये अजीबो गरीब खिक डाल दी कि नेशनल असेंबली पास कर ले उसके बाद सूबा जो है वो उसको रिजेक्ट कर दे। ये गलत है, मेरा ये ख्याल है कि इसको दुरुस्त होना चाहिए।
0: सूबनि जे सरहदनि बाबति क़ौमी असेंबली आइनी तरमीम नथी करे सघे। तरमीम लाइ सूबाई असेंबलीअ मां ॿ भाङे टे जी अक्सरियत ज़रूरी आहे। ज़ियाउल हक अठी तरमीम ज़रिए आइन खे तब्दील कयो हो जंहिंखे दुरुस्त थियण घुर्जे। सूबनि जे सरहदनि में तब्दीलीअ बाबति क़ौमी असेंबली तरमीम नथी करे सघे। सदर बि तरमीम ते सूबे जी मंज़ूरीअ बिना सही नथो करे सघे। कराचीअ में मीडिया सां ॻाल्हाईंदे सिंध जे वॾे वज़ीर सैद मुराद अली शाह जो चवणु हो त जेकॾहिं क़ौमी असेंबली सिंध जे विरहाङे बाबति को ठहराउ मंज़ूर कयो त सिंध असेंबली पहिरें ई अहिड़े ठहराउ खे रद्द करे चुकी आहे। सिंध जे माण्हुनि बि पंहिंजो फ़ैसिलो ॿुधाए छडि॒यो ऐं असां सिंध जे अवाम सां गॾु बीठल आहियूं। वज़ीर आज़म जी सदारत हेठि ज़रई शोबे बाबति अहम इजलास। ज़रई शयुनि जी बरामदात लाइ घुर्बल क़दम खणण जी हिदायत। ज़रई शोबे जी बरामदात वधाइण लाइ माली मदद करण जो बि फ़ैसिलो। शहबाज़ शरीफ़ चयो त पाकिस्तान जी ज़रई शयुनि जी आलमी मंडीअ ताईं रसाई यकीनी बणाइण लाइ क़दम खया वञनि। सूबनि सां बि राब्तनि खे बहितर कयो वञे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीटीआई जी 27 सेप्टेम्बर ते ऐलानियल लांग मार्च ख़िलाफ़ दरख़्वास्त ते ॿुधणी। एडवोकेट जनरल केपी अदालत में पेश, दरख़्वास्त जी मुख़ालफ़त। पीटीआई ऐं केपी जे वॾे वज़ीर खे धुर बणाइण जी इस्तदा। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर जो खैबर पख्तूनख्वा जे चीफ सेक्रेटरी ऐं आईजीअ खे हल्फी बयान जमा कराइण जो हुकुम। पीटीआई वफ़द जी मौलाना फज़ल रहमान सां संदसि रहाइशगाह ते मुलाक़ात। पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गोहर असद कैसर ऐं ॿियनि मुलाक़ात कई। हुकूमत मुख़ालिफ़ तहरीक ऐं पीटीआई जी इस्लामाबाद में ऐलानियल धरणे ते ॻाल्हि ॿोल। बैरिस्टर गोहर चयो त इहतजाज जो फ़ैसिलो रुगो पीटीआई जो न पर अपोज़ीशन जो आहे। सभु जमायतूं शरीक थींदियूं।

0: जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर दारो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।

भी लेंगे और आप हमें कॉल कर सकते हैं 03000113488 पर। बिल्कुल जनाब, इस नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, चाहे कहीं पर भी हमारी आवाज जा रही है, कहीं पर भी हम सुनाई दे रहे हैं जनाब, आपको हम खुले दिल से वेलकम करते हैं अपने शो में कि आप आइए। और हमारे जो फेसबुक पेज है GFMH8 नेटवर्क का, उस पर भी हमारा जो फ्लायर है वो अपडेट है, आप उस पर भी जनाब हमें नीचे मैसेजेस कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें कॉल कर सकते हैं 03000113488 पर। तो जनाब, हम बात कर रहे थे अपने एक कायद की, मोहम्मद अली जिन्ना सिर्फ एक सियासतदान नहीं बल्कि वो एक ऐसे रहनुमा थे जिन्होंने अपनी पूरी सियासी जिद्दोजहद मुसलमानों के सियासी, माशर्ती और आईनी हकूक के लिए वक्फ कर दी। उनके सबसे बड़ी ताकत उनका अज़्म, असूल पसंदी, कानून पर यकीन और अपने मकसद पर साबित कदमी थी। पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को एक आजाद मुल्क के तौर पर दुनिया के नक्शे पर उभरा और कायद आजम रहमतुल्लाह अलैह ने इस नए मुल्क के पहले गवर्नर जनरल बने। लेकिन आजादी के सिर्फ एक साल बाद 11 सितंबर 1948 को कायद आजम का इंतकाल हो गया। एक अजीम बाप खत्म हुआ, लेकिन उनका पैगाम आज भी हमारे सामने मौजूद है। बिल्कुल जनाब, उनका पैगाम हमारे सामने आज भी मौजूद है और हम जितना भी शुक्र बजा लाएं अपने रब का, अपने कायद का, कि उन्होंने हमें ये आजाद वतन दिया जहां पर आज हम आजादी से सांस ले रहे हैं। बिल्कुल जनाब, वो तो हमें आजाद वतन देकर चले गए, लेकिन उनकी जो ये कुल कायनात थी पाकिस्तान, हमें उसकी हिफाजत करनी है, हमें उसको साथ लेकर चलना है, उसकी तरक्की और तरवीज के लिए दिन रात काम करना है, क्योंकि जनाब उन्होंने ये वतन बनाकर हमारे हवाले कर दिया, अपने उस वक्त के नौजवानों के हवाले कर दिया। और ये नस्ल दर नस्ल चला आ रहा है कि हमारे जो बड़े थे वो अल्लाह को प्यारे हो गए और फिर जो है अपने घरों की, अपने पाकिस्तान की बागडोर नौजवान नस्ल के हाथ में आती गई। तो जनाब, नौजवान नस्ल उसको कहां से कहां लेके जा रही है, क्या कर रही है, ये तो आप हमें बताएंगे फोन कॉल करके। और कुछ हम रोशनी डालेंगे जनाब, 03000113488 हमारा नंबर है। तो क्यों ना हम शो का स्टार्ट लें अपने एक जबरदस्त से कौमी नगमे से। हम प्ले कर चुके हैं जनाब एक बहुत जबरदस्त सा कौमी नगमा हमारे पास इस वक्त मौजूद है, जिसे यकीनी तौर पर आप सुने। और इस कौमी नगमे के साथ साथ हमारे साथ जुड़े रहिए GFMH8 नेटवर्क पर, आपके अपने शो आई लव यू ऑल में। तो हम वापस आते हैं इस मिलन नगमे के बाद।

0: यूं दी हमें आजादी के दुनिया हुई हैरान, ए कायदे आजम तेरा एहसान है, तेरा एहसान। बिल्कुल जनाब, कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह का ये एहसान है कि उन्होंने हमारे लिए पाकिस्तान जैसा एक अजीम मुल्क बनाया और आज हम उसमें सांस ले रहे हैं। दोस्तों जरा सोचिए, सिर्फ एक लम्हे के लिए सोचिए कि अगर आज कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह आज हमारे दरमियान मौजूद होते तो वो हमसे क्या कहते। शायद वो हमसे कहते, अपने मुल्क से मोहब्बत सिर्फ अल्फाज से नहीं अपने किरदार से करो, ईमानदारी इख्तियार करो, अपने फराइज अदा करो, कानून का एहतराम करो, दूसरों के हकूक का ख्याल भी रखो, तालीम हासिल करो और पाकिस्तान की तरक्की में अपना किरदार जरूर अदा करो। तो जनाब, ये सारे सवाल होते जो कायदे आजम हमसे जरूर कहते, और एज अ गुड ह्यूमन बीइंग, एज अ अच्छा इंसान, एज अ प्योर पाकिस्तानी, एज अ सच्चा पाकिस्तानी, हम लोग भी अगर अपने आप से ये सवाल करें कि हम ये सब चीजें कर रहे हैं, अगर नहीं कर रहे तो हमें करनी चाहिए, और अगर कर रहे हैं तो हमें इनको दूसरों तक फैलाना चाहिए, और प्योर पाकिस्तानी होने के नाते हमें ये सब चीजें दिल से करनी चाहिए। तो जनाब, हम लेते हैं शो की कॉल्स और साथ साथ आपको शामिल प्रोग्राम भी करते हैं और आपसे कुछ सवाल भी करते हैं। 03000113488 हमारा नंबर है, देखते हैं लाइन पर हमारे साथ साथ कौन आने वाले हैं। आप हमें कॉल कीजिए 03000113488 और लेते हैं शो की एक और कॉल। अस्सलाम वालेकुम जी, हेलो, आवाज नहीं आ रही आई थिंक। चले जी, कोई गल नहीं है, आप हमारे साथ रहिए, शाम के 7 बजे तक हम आपके साथ हैं, और लेते हैं शो की एक और कॉल। अस्सलाम वालेकुम, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी जनाब, आप हमारे साथ हैं और हमारे साथ साथ रहिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम आपकी कॉल्स लें और आपको शामिल प्रोग्राम करें। अस्सलाम वालेकुम, हेलो, अस्सलाम वालेकुम, हेलो, अस्सलाम वालेकुम,
1: हेलो,
0: हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
1: जी जी, वालेकुम सलाम।
0: अच्छा, केर प्या गलायो, कितना प्या गलायो?
1: जी मेरापुर
0: का केड़ो केड़ो शहर भा?
1: खुर्शीद अली।
0: खुर्शीद अली शहर साहब, केड़ा हाल चाल है, ठीक ठाक आयो सफा?
1: दुआओं अल्हम्दुलिल्लाह,
0: बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। अदा अज असा कायदे आजम डे जे हवाले से तमाको कुछ पूछना चाहूं था, पूछी सकूं था बा? अदा अज कायदे आजम जो जेको है डे मल्हायो पियो वञे, अज कायदे आजम जो इंतकाल थियो, असां खे पाकिस्तान जेड़ो अजीम मुल्क दिनो आहे, त असां इन अजीम मुल्क में छा था कयूं उन जी तरक्की जे लाइ, उनखे संभालण लाइ?
1: वॾनि वॾनि कॉलेजनि में माना पाण पढ़नि पिया, कोशिशि पिया करे इंसान त हुननि जेको पाण सिखियो आहे उहो माण्हू ॿियनि खे सेखारे,
0: ॿियनि खे बि ज़रूरु फैलाए हुन इल्म खे, ऐं जेको आहे सुठियूं सुठियूं ॻाल्हियूं करे पाकिस्तान
1: में डेली तालीम करे।
0: एग्ज़ैक्टली एग्ज़ैक्टली,
1: उहा माना असांजे इस्लाम में तमामु घटि थी वियो, उहा असांखे ज़रूरु ॼाण हुजे।
0: बिल्कुल, तालीम त तालीम आहे, दीनी बि तालीम आहे, दुनियावी बि तालीम आहे, इहा ॿई तालीम असां पंहिंजे ॿारनि खे जेको आहे हासिल करण ते ज़ोर ॾियूं, ऐं सख़्ती कयूं हुन ते, हुननि खे इहा तालीम ज़रूरु हुजे।
1: हा बिल्कुल, क़ुरान जी तालीम लाज़मी आहे।
0: बिल्कुल बिल्कुल, छो त पाकिस्तान जेको आहे इस्लाम जी बुनियाद ते ठहियो आहे, त इहा त ज़रूरी आहे असां सभिनी लाइ, त दीनी बि तालीम ऐं दुनियावी तालीम ज़रूरु ॾियारियो पंहिंजे ॿारनि खे। बिल्कुल बिल्कुल, उनके खराज तहसीन पेश कयूं, उन्हनि जे ख़्वाबनि ते अमल कयूं, उन्हनि जी ॻाल्हियुनि ते अमल कयूं, त इहो ई वॾी ॻाल्हि हूंदी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, त बिल्कुल शर साहब, इहो ॿुधायो, अॼु तव्हां गानो कहिड़ो ॿुधणु चाहियो था, तव्हांखे उहा गाना तव्हांजी फरमाइश ते
1: ॿुधाईंदासीं।
0: कहिड़ो?
1: हिकु अलाह कनू में डरंदी, हिकु मौला कनू में डरंदी।
0: वाओ, थोरो गुनगुनाए ॾियो आहे त वरी चार चंड लॻी वञनि।
1: गुनगुनायो?
0: हा गुनगुनायो, अगरि गुनगुनाइण चाहियो था त।
1: अच्छा
0: जी,
1: अरे हेतिरो आवाज़
0: हलो भला, असां पंहिंजा कन बंदि करे छॾंदासीं, कोई मसो न आहे। न तव्हां मां सुरीला आहियो थराइजी थी, पर तव्हांखे करणु चाहियो
1: सभ खां पहिरियां बाबर साहब विया ऐं तव्हांजी पूरी टीम विया
2: जी जी

0: वालेकुम
1: अस्सलाम।
0: थैंक
1: यू शर साहब, थैंक यू सो मच। हमारे साथ जनाब शर साहब, अस सभी सेंड करो शर साहब जो तमाम घनी सुठी गालू पे करे असे पांच बार इो दीनी भी तालीम जो है दियण खपे दुनियावी तालीम भी दियण खपे तो यह तमाम घनी सुठी गाल कई असा शर साहब जो मेरापुर का हो हाँ दिखो सभी से गड लाइन केर है तुम भी असा कॉल कर सो 03000113488 जी तीन फरमाइश भी पूरी कराए सो अज शो में पार्टिसिपेट भी कर सो। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम।
1: केर सा सबनी से गड मुजा जानी मोहम्मद अली साहब केड़ा हालचाल तब ठीक ठाक है हो
2: मोहम्मद अली जरवार।
1: अच्छा मोहम्मद अली जरवार
2: मोहम्मद अली जरवार
1: मोहम्मद हनीफ जरवार
2: मोहम्मद अली जरवार
1: अमार पवे ने सिग्नल के मोहम्मद हनीफ मोहम्मद अजीज जरवार सॉरी ओके ओके मोहम्मद अजीज जरवार साहब केड़ा हालचाल है ठीक ठाक है हो सफा सफा मस्त मौला तमा यू बुधायो ता पाकिस्तान करी आजाद थे वाओ ग्रेट यार जबरदस्त अड़ा पाकिस्तानी मुख्य वणंदा जैके तमाम सुठा सुठा सवाल जा जवाब भी इंदा तमाम माशाल्लाह एक जबरदस्त पाकिस्तानी आयो तू बुधायो पाकिस्तान की तरक्की तरवीज लाए असा सबनी के छा करण खपे जबरदस्त जबरदस्त रात दी मेहनत करनी खपे तमा छा कंदा आयो अदा माशाल्लाह माशाल्लाह ताजा भाईर आई बार बार आई तारीम हासिल कन था जबरदस्त माशाल्लाह प्राउड ऑफ यू आई यू बुधायो आपदा प्रेरित प्ले तो क्या कैंजे नाले था करना चाहो केड़ो केड़ो शमन जो तांके माहिन जे बाद बुधायो अब बड़े मरिया से वाह वाह वाह वाह यो तमाम घणो खतरनाक गानो आ बुधाइन मा ता के पर यो गानो हने केंजे नाले करन चाहो
2: यो काली क्लासरी है प्रधान खास के लिए रायल शरीफ है तने की बहन बुलला सारी बुलला जी नाले गानो में गानो बुधरन
1: जे इंशाल्लाह मुजा प्यारा भा ता के गानो जरूर बुधना से असा प्ले कर चुका हूं जबरदस्त ट्रैक एक अल्लाह कलू में दर्दी एक मौला कलू में दर्दी बुधाइन खोर सारो एंजॉय के।

عیب منو اکو صفت میری کرا عشق محمد ذات دینا

0: ಕಡೂದಿ ಅಪ್ಪು ಮೊಳ ಮಹಜಾರ್ತಿ ಕಡೂದಿ ಆಹಾ ಆಹಾ ಸೊಣ ಜಾರ್ತಿ ಕಡೂದಿ ಅಲಿ ಅಲಿ ಮಹಜಾರ್ತಿ ಕಡೂಲಿ ಕರ್ದಿ
1: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले फसल।
2: स्किन डल बेरोनक लगी थी।

0: हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं ग्लो। पेश आहे वाइट क्रीम, अव्हां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अव्हां खे रेडियंट लुक जे इस्तेमाल जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एज ब्यूटी सोप। वाइट एज ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: हक सच जो आवाज़, गीत संगीत जो आवाज़, जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज़। ॿुधंदा रहो।
2: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
3: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
2: जीए एफएम नेटवर्क,
3: सिंध की आवाज़।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज, बदलता रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खिते की बनी है आवाज,
1: जीए एफएम नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: मौसम जेको आहे सर्दी जो अचण वारो आहे, दिलि जाए कयो। बिल्कुल
1: बिल्कुल।
0: इहो ॿुधायो अदा साईं, मुंहिंजा प्यारा भाउ, त गानो हाणे ॿुधायां थो सोणी अखियां, छो त असां खां हिकड़ी लिसनर फरमाइश कई आहे हकीम मसूद जमाली साहब, पोयां बि प्रोग्राम में फरमाइश कई, असां न हलाए सघियासीं, हाणे चऊं हुन जा दिलि नथा टोड़े हुन जो। अच्छा बस
1: ओके
0: ओके मुझा प्यारा। तो जनाब हम गाना प्ले करते हैं, बहुत प्यारा सा सोनिया किया, इस गाने को सुनिएगा, सुनतरीगा जी एफ एम एटी एट नेटवर्क से, आपका अपना शो आई लव यू ऑल विद अशफाक नियाज़ी।

0: 5:45 PM. This time check is brought to you by
1: Bank Islam ne laya Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
2: Shah Latif ka
3: हक सच जो आवाज गीत संगीत जो आवाज ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज बुदंदा रहो बुदंदा रहो
4: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज
5: उसी खित्ते की बनी है आवाज
4: जीए FM नेटवर्क
5: सिंध की आवाज
6: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा 3 की ताकत मिले फसल भरपूर खिले

0: सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बदलता रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: कहिड़ो मेलो हुयो, मूंखे त यादि बि अञा कोन्हे, पर तव्हां कहिड़ो मेलो एंजॉय पिए कयो असांखे ज़रूर ॿुधायो त तव्हां जेको मेलो एंजॉय कयो था ऐं पंहिंजे दोस्तनि सां गॾु ज़बरदस्त तरीक़े सां हिन मेले खे एंजॉय करणु वॾी ॻाल्हि हूंदी आहे त दोस्तनि सां गॾु घुमण फिरण जो प्रोग्राम ठाहियूं ऐं वरी उते वञूं ऐं मज़ो अचे त तव्हां एंजॉय कयो ऐं मुंहिंजो प्रोग्राम बि ॿुधो। वठूं था शो जी नेक्स्ट कॉल। अस्सलाम वालेकुम।
1: साईं वालेकुम सलाम
0: जी। आई थिंक वफ़ा वहीद जतोई असां सभिनी सां गॾु मौजूदु आहिनि।
1: साईं बिल्कुलु बिल्कुलु वफ़ा अब्दुल वहीद जतोई भाउ केटी शाबिलो तालको गुलो सखरा।
0: वाह वाह वाह ज़बरदस्त। वहीद साहब इहो ॿुधायो त अॼु जेको आहे असां यम वफ़ात जो ॾींहुं मल्हायूं पिया क़ाज़ी आज़म मोहम्मद अली रहमत अलह जो, त इहो ॿुधायो त जेको आहे पाकिस्तान जी तरक़ी लाइ तव्हां असांजे नौजवाननि खे कहिड़ो मैसेज ॾियणु चाहियो था त छा कयूं, कहिड़ो कमु कनि उहा त जीअं उहो पाकिस्तान जी तरक़ी लाइ माना पंहिंजो हिसो जेको आहे विजन।
1: साईं तव्हां हिकिड़ो ॻाल्हि बि कोन थो हलां
0: जी जी,
1: त हो असांजे लाइ असां वॾा ख़ुशि नसीब जे हो पाकिस्तान ठाहियो वियो।
0: जी जी जी बिल्कुल।
1: हिकु ताला हुनखे जनत में जायूं
0: ॾींदी।
1: ॿियो ॻाल्हि इहा त असां नौजवाननि खे इहो पैगाम ॾींदासीं त पंहिंजे मोहबत मुल्क में फैलियो, अमन सां गुज़ारियो ऐं जहिड़ो फितरू न कयो। हाणे ॾिसो था अक्सर जहिड़ा आहिनि सिंध में आहे बारिश का
0: बिल्कुल ई आहे त हर तरफ़ नफ़्सा नफ़्सी ऐं झेड़ा लॻा पिया आहिनि।
1: नफ़्सा नफ़्सी हाणे तव्हां इते ॾिसो छॾो, पर थोरी ॻाल्हि ते वॾियूं ॻाल्हियूं थी चवनि त असां इहो पैगाम ॾींदासीं पंहिंजे चैनल थ्रू त दादा पंहिंजे कामयाबी माणियूं ऐं झेड़नि फितनि खे छॾियो, नफ़रत खे छॾियो, गिले सिगरी सार खे कुटदा, सार हसद न कयो, बसि सौ ॻाल्हि
0: हिकु। एग्ज़ैक्टली सारी हसद जॾहिं असां कंदा आहियूं त पोइ असां जेको आहे हमेशह पोइते रहिजी वेंदा आहियूं। ऐं पोइ असांखे बदिले वठण जी उहो हूंदी आहे त असां बदिले वठूं, अला कंहिंखे बि अगरि अला असांखे ॾिनो आहे त उहो हुनजो नसीब आहे, असां कंहिंजो बि नसीब खसे कोन था सघूं।
1: बिल्कुलु बिल्कुलु ज़ाहिर ॻाल्हि आहे। तव्हां असां ॾिसो पाकिस्तान जो झंडो बि छा आहे।
0: जी पाकिस्तान जो झंडो
1: तव्हां बि ज़रूरु घुमिया हूंदव कचनि में पतनि में, त मुल्क सावक सावक
0: आहे,
1: पाकिस्तान कीअं थो माना सावक सां गूंजे,
0: अला साईं जे फज़लो करम सां सावक सां गूंजे थो। बिल्कुलु
1: बिल्कुलु।
0: त वहीद वफ़ा साहब इहो ॿुधायो हाणे शमन जो गानो हिकिड़ो भाउ प्ले करण लाइ चयो आहे त उहो तव्हां बि शमन ॿुधंदा आहियो त
1: बिल्कुलु असां त जम शमन आहियूं छो त वॾा जीअल आहियूं।
0: हा सही सही,
1: मां असांखे शमन जो गानो हिकिड़ो मूंखे वणंदो थी।
0: कहिड़ो?
1: हसीन ज़िंदगी की गुज़री गई या ख़्वाबो या हवा, इहो अथव मुख़्तार शाह जी शायरी।
0: अच्छा इनशाला इहो बि ज़रूरु प्ले कंदासीं, पर फ़िलहाल हुन कयो हुन चयो आहे शीशे का दिल मेरा उसने पत्थर से तोड़ दिया ज़ालिम ने।
1: इहो बि ज़बरदस्त।
0: कंहिंजे नाले खणणु चाहियो शहीद भाउ?
1: बारिश था त अलाह तव्हांखे वधाए प्रोग्राम कंदा रहो, हिकु त तव्हां ॾे असां ॿुधी वॾी दिलियुनि जा था कयूं, स्पेशली भाष था कंदासीं इहो नगमो तंहिंजे नाले।
0: वाह वाह वाह थैंक
1: यू। ॿियो हिकिड़ो बेटो अथव बाबर शेख साहब।
0: अच्छा बाबर
1: अले काॾे लंबी जुदाई करे आहे ख़बर त कान्हे, न त प्रोग्राम करे कोई कोन थो, इन खे बि खोड़ सारा सलाम।
0: वालेकुम अस्सलाम।
1: मां जो कहाणी जो आहे रफ़ीक जो तूं गोली मारे मां ॿुधे वरितो।
0: अच्छा मां चओ गोलियुनि जो कारोबार कंदो आहे।
1: ॿियो मुंहिंजो भाउ आहे ज़हीर मन जतई, मुंहिंजे भाटे आया त मन जतई, बाक़ी जेके हाल चाल ॿुधनि था
0: जी जी
1: वफ़ा अब्दुल वहीद जतीअ पारां सॼनि ॿुधंदड़नि खे ऐं तव्हांखे सॼे स्टाफ खे वफ़ा अब्दुल वहीद जतीअ पारां खोड़ सारा सलाम।
0: वालेकुम अस्सलाम खोड़ सारा। थैंक यू वहीद भाई। असां सभिनी सां गॾु वही जतोई साहब जेको असांखे हमेशह रेगुलर कॉल कंदो आहे, त जनाब तव्हां बि असांखे कॉल करे सघो था। असां तव्हांखे हींअर ॿुधायूं था शीशे का दिल मेरा पत्थर से तोड़ दिया और भाई शमन अली मिराली, पर हुन खां पहिरीं वठूं था शो जी हिकिड़ी ॿी कॉल ऐं चऊं था सलाम अलेकुम। हैलो जी जनाब हमारे साथ आ तो गए हैं हमारे भाई और पर ये बात क्यों नहीं कर रहे। हैलो अस्सलाम वालेकुम।

0: कॉल भी एंड हो गई है, पर कोई बात नहीं, एक और आ गई है।
1: अस्सलाम वालेकुम।
0: अरे भैया हेलो, चलिए जनाब लगता है मुझे हेलो हेलो में टाइम ज़ाया हो जाएगा, तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं जनाब कि ये कि आपको सुनाते हैं गाना, और गाना है शीशे का दिल मेरा, और इसने तोड़ दिया, पत्थर से तोड़ दिया कि पता नहीं किस चीज से तोड़ दिया, सुनते हैं और एंजॉय करते हैं।

0: It's 6 PM. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Diya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: मोरो
3: नौशहरा
4: साथ जिंदगी भर का
5: सेनेट जे इजलास दौरान नवन सुबन वारे मामले ते बहस करायो वेंदो इस्लामाबाद के दार सुबो ठाहिण ते का गाल बोलना आए थी राजधानी वारे शहर के सुबो ठाहिण बदिरां उते एक नओ गवर्नेंस मॉडल ठाहिण जूं तयारी सिंध के सियासतदान कानून दादन अदीबन सियासाफियों सिंध के इम्कानी विरांगे के रद्द कर छो वध सिंध कराची यूथ डायलॉग में सिंध के इम्कानी विरांगे खिलाफ ठहराव मंजूर मरसू सिंध न डेसू जहा नारा पीपुल्स पार्टी सिंध के सदर निसार अहमद खोड़े चाहिए सिंध असेंबली छह भेरा ठहराव मंजूर किया तो कराची के सिंध का धार न थो कर सकते सिंध जहा मानू जानू कुर्बान कर सकन था पर धरती माओ जो विरांगो बर्दाश्त न कंदा सूबाई वजीर सईद गनी जो चवण है खेस हालतू खराब थन्दे नजर अची रो सिंध के विरांगे में सब खा वी रुकावट पीपुल्स पार्टी न पर सिंध जो अवाम आए पीटीआई वारा तकरीरू तो कन था पर इन सूब के विरांगे खिलाफ वोट न डनो जमात इस्लामी जो एक मेंबर आए वो वोट डण बदरा भजी वो सीनियर वकील शोआब सरकी आसमा शिराज ए प्रोफेसर डॉक्टर सईद जफर चयो तो मुल्क परियां ही घणो विरहायल आए वधीक तकसीम जो गालियों मुनासिब न आन सब तजुर्बा थी चुका आन मुल्क वधीक का तजुर्बे की सट नथो सही सके पेट्रोलियम शयुन के अगन में वाद रुक जी न सगी पेट्रोल 3 रुपया 5 पैसा ए डीजल 5 रुपया 37 पैसा फी लीटर महंगो पेट्रोल जो नओ अघ 370 रुपया 80 पैसा ए डीजल जो नओ अघ 398 रुपया 80 पैसा फी लीटर थी वयो पेट्रोलियम डिवीजन पारा जारी कयल नोटिफिकेशन मुजिब पेट्रोल ए डीजल जा नवा अघ 11 सितंबर लाइ हूंदा हुकूमत पेट्रोलियम लेवी खत्म करण बाबत फैसलो न करे सघी गालियुनि जे बे दौर दौरान जमात इस्लामी खां वधीक टिन ॾींहनि जी मोहलत घुरी वरिती जमात इस्लामी जा लाहौर पिशावर कराची सखर समेत ॿियनि शहरनि में धरणा जारी हाफिज़ नईम रहमान चयो आहे त हुकूमत पेट्रोलियम वज़ारत ऐं आईपीपी सां ॻाल्हाइण लाइ मोहलत घुरी आहे हुकूमत जो रवियो दुरुस्त न थियो त लागमार जो ऐलान कयो वेंदो सॾ खां पोइ कारकुन सॼे मुल्क मां निकरंदा ऐं हुकुमरान खे पोइते धिके छॾींदा

0: जेतिरी बि हिननि जा नापाक इरादा आहिनि सिंध खे तक़सीम करण जा, हुन जे असां बिल्कुलु ख़िलाफ़ आहियूं। सिंध जा माण्हू सम्झनि था हुन जे वादानत ते वार आहे त सिंध मां मिलंदो, असां सिंध सां गॾु आहियूं, कंहिं बि समाज सां गॾु कॾहिं बि न बीहंदासीं।
1: सिंध जो आवाम न अॻे कॾहिं सिंध खे तक़सीम करण ॾिनो आहे, न हाणे ॾींदासीं।
2: सिंध वारा न ॾींदासीं,
1: पर सोचूं था त सिंध जी विरासत न, पर असां सिरनि जी विरासत कंदासीं।
0: सिर्फ़ ऐं सिर्फ़ सिंध जे वसीलनि ते कब्ज़ो कंदी
1: ग्राम असांजे नामंज़ूर आहे, धरती जो इंच इंच जी हिफ़ाज़त कंदासीं। ऐं उन जो सबूत आहे फ़ाइदो ॾिसंदा सिंध जो पुराण जा इन जा इहो फ़ाइदो जा चथा कंदासीं। सिंध जा मज़ूर, सिंध जा हारी, सिंध जा उस्ताद, सिंध जा शाइर, अदीब, वकील, पंच हूंदा।

0: सिंध जे अमकाने विरांग खिलाफ़ सिंध जा वकील मैदान ते अची विया। सिंध बार काउंसिल जे सॾ ते वकीलनि हिकु आवाज़ थी मुतल सिंध जो वाज़े पैगाम ॾेई छॾियो। सिंध यूनिटी डे वारे सॾ ते अदालती कारवाइयुनि जो बाइकाट ऐं मुज़ाहिरा। कराची खां कश्मोर ऐं कारूंजर खां केटी बंदर ताईं को बि वकील कंहिं बि अदालत में पेश न थियो। कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, शहीद बेनज़ीराबाद, सखर ऐं लारकाना डिवीज़न जे समूर नंढनि वॾनि अदालतुनि में को बि केस न हलियो। एहतियाजी मुज़ाहिरा ऐं धरणा।
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज़। जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए एफएम नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज। की आवाज़।

0: जेको आहे खाइण पीअण जा रेस्टोरेंट तमामु घणा फुल बि लॻा पिया हूंदा आहिनि ऐं सखर माशाला एतिरो हाणे अपडेट थी चुको आहे त हिते मुख़्तलिफ़ ब्रांड्स बि अचनि था खाइण पीअण जा बि कपिड़े लते जा बि शूज़ जा बि त माना इहो तमामु घणी सुठी ॻाल्हि आहे त असांजो जेको सखर आहे उहो हाणे तमामु घणो ज़बरदस्त तरक़ी जेको आहे करे रहियो आहे माशाला त असां हिन खे मेंटेन कयूं असां हिन जी ज़िमेवारी वठूं ऐं पंहिंजे सखर खे साफ़ सुथरो रखूं। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम शिवाक भाई।
0: हां जी, मुझे केड़ो भाव मुसा घर मौजूद है जनाब?
1: अमीर बख्श महर।
0: अमीर बख्श महर साहब किथा कॉल किया? अमीर बख्श साहब ता
1: पन्यागिल।
0: पन्यागिल कहां? पन्यागिल वाला सब केड़े हालत में आदा? अमीर बख्श साहब पन्यागिल वाला सब केड़े हालत में आहिन?
1: पन्यागिल वारा काट लगा पियान।
0: माशाल्लाह। अमीर भाई छा कंदा आयो तमान नाले जा अमीर आयो पांजे दिल जा भी अमीर आयो
1: जेको समझो तव्हां
0: न मूंखे लॻे थो तव्हां पंहिंजे दिलि जा बि अमीर आहियो।
1: बिल्कुलु।
0: हा, गुड गुड, वेरी गुड। इहो ॿुधायो त तव्हांखे शो असांजो कीअं लॻे थो? अच्छा, क़ाइद आज़म जे हवाले सां अॼु ॻाल्हायूं था। क़ाइद आज़म जो जेको आहे अॼु यम वफ़ात आहे त हुन जे हवाले सां असां सवाल बि कयूं था, तव्हां खां सवाल करे सघूं था? क़ाइद आज़म जेको आहे हुन जो मशहूर असूली पैगाम कहिड़ो हुयो जेको तव्हां अमूमन न जेको तव्हां अमूमन तालीमी इदारनि ते बि वञी ॾिसंदा आहियो ऐं स्पेशली तौर ते जेका आहे थाणनि में वॾे वॾे जेको आहे उते लिखियलु हूंदो आहे पुलिस चौकियुनि ते बि लिखियलु हूंदो आहे इलाही जॻहनि ते लिखियलु हूंदो आहे। अच्छा, तव्हांजो चवण आहे त ॿारनि खे तालीम ॾियारियो की कोई मसइलो न आहे। अमीर बख्श साहब इहो ॿुधायो, मां हाणे गानो थो प्ले कयां जेको आहे न रहंदे तूं न रहंदुसि मां जेको आहे मुमताज़ लाशारी जो, कंहिंजे नाले ते ॻाइण चाहियो? वालेकुम असलाम मुंहिंजा प्यारा अमीर भाउ, पंहिंजो ख़ासि ख़्यालु रखिजो, पंहिंजो अकल वारनि खे सभिनी खे सलाम ॾिजो। जी जनाब, हमारे साथ थे अमीर साहब और हम आपके साथ मौजूद हैं, आप भी हमारे साथ मौजूद हैं, तो क्यों ना लें शो की एक और कॉल और देखें लाइन पर हमारे साथ कौन है। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम,
0: ठीक ठाक मजे में मुझे प्यारा भाई, खैर सा सभी सा गद शहर खां सोनो अब्दुल्ला भंगवार असां सभिनी सां गॾु मौजूद आहे। सोना अब्दुल्ला भंगवार साहब, छा हाल चाल आहिनि तव्हांजा?
1: मौसम तमामु ज़बरदस्त आहे, पूरी फैमिली सां थींदो निचड़ो वारा ॿुधूं था केॾी चंड लॻे थो सर।
0: माशाला माशाला, सदके वञा पंहिंजे सोणे अब्दुल्ला भंगवार ते, तव्हां सभिनी खे असांजो सलाम, असांजी टीम जो सलाम। इहो ॿुधायो त हिन सुठे मौसम में भला तव्हां कुझु खाइण पीअण जो बंदोबस्तु कयो आहे? छो त जॾहिं सुठो मौसम हूंदो आहे त माण्हू पकौड़ा पचाईंदो आहे, चांहि या कॉफ़ी बि पीअंदो आहे, त तव्हां छा
1: पकौड़ा?
0: माना चटपटी शाम। गुज़ारे वेंदा मुंहिंजो तमामु घणो फेवरेट गानो आहे, पर अच्छा कंहिंखे देरि केरु कंदो सखर शहर में?
1: हा, सखर शहर में मुंहिंजो दोस्त अली रसन भाई खे इलाही प्यारो सॼण डॉक्टर सॼण मुखा तव्हां आहियो।
0: वालेकुम
1: अस्सलाम। हिन वक़्त ॿुधनि था मुंहिंजी इलाही प्यारो सॼण मुंहिंजो भाउ ॿुधायो
0: हिन वक़्त
1: अॼु ॻाल्हि मूंखे त अॼु शंकरा अॼु
0: वालेकुम अस्सलाम मुंहिंजा सोणा प्यारा कंदकोट खां। जी जी जी जी जी,
1: इहो सर गानो असांखे फिल्म ॿुधायो महिरबानी करे जेका सखर शहर में मुंहिंजी तरफ़ां
0: वालेकुम अस्सलाम। अब्दुल्ला भाई, मां हींअर गानो जेको हलाईंदुमि ओके ओके, पर हिन वक़्तु मां मुमताज़ लाशारी हलाईंदुमि, हिन जे बाद उहो हलाईंदुमि, ठीकु आहे दा? ओके, सखर वारनि खे इहो गानो डेडिकेट कंदासीं इनशाला। थैंक यू मुंहिंजा प्यारा भाउ, थैंक यू सो मच। हमारे साथ बहुत प्यारे से अब्दुल्ला भंगवार, और अब्दुल्ला भंगवार के बाद आप भी हमें कॉल कर सकते हैं 03000113488 पर, और लेते हैं हम शो की एक और कॉल, देखते हैं लाइन पे कौन है। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम।
0: जी जनाब, खैर हमारे साथ? वाओ,
2: खैर सर। सोना पिताफी
0: कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
2: खानपुर महार जिला।
0: खानपुर महार जिला के कहाँ? सोना पिताफी साहब, तहां कड़ा हाल चाल है?
3: भाई मुझे गौर देना लो सोना पिता भी निसार पिता भी
0: अच्छा निसार पिता भी सॉरी यार निसार पिता भी भाई के हाल चाल है तहां जा
3: खैर लगी सर तो पांच हाल बुदायो
0: अल्हम्दुलिल्लाह निसार भाई छा के दायो ता
3: राखी पोकी
0: माशाल्लाह माशाल्लाह की हलती ताजी राखी पोकी
3: काम सुठो हलंदो
0: अच्छा माना तव्हां राखी पोकी करे जेको आहे पाकिस्तान जी ख़िदमत था कयो पाकिस्तानी ज़मीननि खे सावक सावक ॾेई रहिया आहियो
3: जी साईं
0: वेरी गुड अच्छा निसार भाउ मां गानो थो हलायां इहो न रहंदे तूं न रहंदुसि मां कंहिंजे नाले रखणु चाहियो मुख़्तियार सिद्दी मुख़्तियार सिद्दी टाइम आहे असां वटि हा इनशाला हलाए
3: छॾंदासीं
0: जी जी मुख़्तियार सिद्दी जो कहिड़ो गानो हलायूं मुख़्तियार सिद्दी हलायां थो पोइ जेको आहे मां मामे जमालुद्दीन भयो जी फरमाइश थोरी देरि बाद प्ले कंदुमि ठीकु
3: आहे
0: थैंक यू सो मच हमारे साथ बहुत प्यारे से मैं नाम ही भूल गया एनीवे सॉरी निसार सोना भाई तो इनको हम गाना सुनवाएंगे मुख़्तियार सिद्दी का भी लेकिन आप भी हमारे साथ रहिए और लेते हैं शो की एक और कॉल देखते हैं लाइन पर हमारे साथ कौन है अस्सलाम वालेकुम
4: वालेकुम सलाम
0: जी जनाब इरफान हमारे साथ आए थे
4: लग तो हो ही रहा है
0: अल्लाह अकबर क्या हो गया खफा खफा क्यों
4: यार मैंने मेहनत की है ना खफा नहीं हूँ थोड़ा थक गया हूँ
0: थक कौन सी मेहनत कर ली इतने दिनों बाद
4: यार मोबाइल के दो बटन है एक को दबाता हूँ फिर दूसरे को दबाता हूँ सिर्फ कह रही है आपका मिलाया हुआ नंबर फिलहाल मंसूब है मैंने कहा बस जाने मन तुमसे बात हो जाती है ये हमारे लिए काफी है
0: क्या बात है ठरकी इंसान ये बताओ आज थोड़ी देर से कॉल की है मतलब तुम्हारी इधर कॉल पहले नहीं लग रही थी
4: यार लगी तो सही ये एक दो
0: अच्छा
4: लेकिन वो पिक नहीं हुई और आपकी मोबाइल भी पता नहीं खराब है क्या
0: हमारी मोबाइल बिल्कुल खराब नहीं है हमारे पैसा हमने लगाया करें मुक्का मारूंगा यहाँ से मैं
4: हाँ तो मोबाइल मैंने आपको मशवरा दिया था ना वो आप करें यहाँ तो एक न्यू मोबाइल
0: हमारा मोबाइल बिल्कुल सही है
4: अच्छा इलाज करवाया इसका
0: जी जी
4: किसी सर्जन डॉक्टर के पास ले
0: बहुत अच्छे बहुत अच्छे से
4: माशाल्लाह
0: सही सही सही अच्छा ये बताओ पाकिस्तान की तरक्की में आप कितना हिस्सा डाल रहे हो अपने कामों के थ्रू
4: इश्ताक भाई मैं सिर्फ अपने के लिए नहीं हुक्मरानों के लिए नहीं आपके लिए नहीं लेकिन पाकिस्तान के हर बच्चे के लिए आज बोलूंगा
0: बिल्कुल बोले
4: अच्छा भाई सबसे पहले हम अपने मुल्क को तब तक हम तरक्की नहीं दे सकते जब तक हम खुद चोरी ना करें उसमें हम भी शामिल हैं
0: एग्जैक्टली हम हर तरीके से
4: देखें जी हम कहते हैं कि हुक्मरान चोर है
0: सही
4: बिल्कुल चोर हैं
0: बिल्कुल
4: लेकिन हम भी चोर हैं
0: बिल्कुल हम हमेशा दूसरे पे तंकीद करते हैं कि हमारा ये हुक्मरान चोर है ये हम खुद क्या हैं
4: भाई जो ज्यादा चोरी करता है उस पर इल्जाम आते हैं
0: सही
4: लेकिन हम छोटे चोर हम भी हैं
0: बिल्कुल हैं
4: हम भी बिजली की चोरी करते हैं
0: ओ ओके बिल्कुल
4: हम भी बहुत चोरियां करते हैं अच्छा भाई आप नोट करें हमारा पाकिस्तान 1947 में आजाद हुआ था
0: बिल्कुल हुआ था
4: और हमसे बांग्लादेश ने कितनी देर के बाद आजादी दी थी
0: बिल्कुल
4: आज आप बांग्लादेश की मैशत देखें
0: जी
4: हमारी मैशत देखें हम कितना पीछे हैं
0: बहुत पीछे
4: क्यों पीछे हैं
0: जी
4: बिल्कुल हम इतनी ताकत है बिल्कुल हमसे पड़ोसी मुल्क जो है वो डर रहा है बिल्कुल डर रहा है
0: बिल्कुल
4: लेकिन हमारी मैशत क्यों पीछे है हम क्यों कब हम करप्शन खत्म करेंगे कब हम आगे बढ़ेंगे इश्ताक भाई हम तालीम तो बिल्कुल हमारा हक है
0: जी।
4: वो हम हासिल करते रहेंगे और करेंगे लेकिन इश्ताक भाई हमें खुद सुधरना पड़ेगा तो हमारे हुक्मरान भी सुधर जाएंगे हमारा पूरा मुल्क आगे तरक्की करेगा लेकिन हुक्मरानों को तो अल्लाह पाक समझ देगा हमें भी अल्लाह पाक समझ देगा
0: जी बिल्कुल बहुत अच्छी बात की इन शॉर्ट आपके कहने का मतलब ये है कि हम जितनी भी आवाम है हमारे अंदर छोटे छोटे से करप्ट अनासिर बैठे हैं हमारे अंदर छोटे छोटे से चोर बैठे हैं जिन्हें खत्म करने पड़ेगा जिसने मारना पड़ेगा तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे
4: ऐसा कुछ देखिए अक्सर जेल में वो जाते हैं जो बड़े लोग हैं
0: बिल्कुल
4: वजीर आजम है वजीर अला है एमपी है मैंने ठीक है उसके बाद आपने कभी सुना है कि यूसी का चेयरमैन गया है जेल में करप्शन के केस में
0: बिल्कुल नहीं
4: कभी हम गए हैं चोरी के केस में यार हम बिजली चोरी कर रहे हैं
0: सही बात है
4: तो हम भी तो जाए ना जेल में हमारा
0: जी, बिल्कुल बिल्कुल
4: मेरा भी हक है अच्छा भाई आपका भी हक है
0: बिल्कुल बिल्कुल मैं भी कहीं ना कहीं चोरी डंडी मार रहा हूँ चोरी कर रहा हूँ एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक है हम सभी कहीं ना कहीं किसी न किसी करप्शन में मुब्तला हैं और अगर हम खुद ठीक हो गए तो हमारा पाकिस्तान ठीक हो जाएगा
4: अच्छा भाई ये आज बातें मेरी जेल में घूम रही थी इसलिए मैंने जज्बाती होके कॉल ट्राई की इसलिए मेरी लाइन नहीं मिली जब मैं ठंडे दिमाग से कॉल ट्राई करता हूँ तो सही कॉल लग जाती है
0: बहुत अच्छी बात है ठंडे दिमाग से ही काम होता है जी
4: हाँ हुकूमतें चेंज होती रहती हैं
0: जी जी
4: लेकिन हम वही हैं
0: हम वही हैं
4: चेंज नहीं होते
0: हम चेंज नहीं होते हमें खुद को चेंज करना चाहिए
4: देखिए ना वो पार्टी नहीं है जिसका सदर या कोई उसका आदमी जेल में नहीं गया है।
0: सही सही सही,
4: सब गए हैं,
0: सब गए,
4: लेकिन फिर वो हुक्मरान भी बने, हम तो अपनी जगह पे खड़े हैं।
0: सही सही,
4: सिर्फ हम महंगाई महंगाई के जो है ना हमारी आवाजें निकलती हैं, बिल्कुल महंगाई है
0: बिल्कुल,
4: लेकिन हमें भी सुधरना होगा हमारे हुक्मरानों को, तभी हमारा मुल्क तरक्की करेगा। और मैं कह रहा हूँ सुपर ताकत, सुपर आज ताकत है ना, इतनी ताकत है ना हमारा मुल्क, सब सुपर ताकत बनकर और सुपर पावर भी बन सकता है, लेकिन हम सुधरेंगे तो
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और अगर हमारे पाकिस्तान के नौजवानों सबकी यही सोच हो जाए तो इरफान कमाल हो जाएगा। थैंक यू सो मच। अच्छा ये बताओ, कायदे आजम का मशहूर असूली पैगाम क्या था, वो जो आप हमेशा बड़े बड़े लफ्जों में लिखे हुए देखते हैं, कभी किसी तालीमी इदारे पर, कभी किसी यूनिवर्सिटी में, और बाज़ औक़ात तो अगर थाने को आने का चक्कर आपका लगाया या किसी बड़े भी था उसका तो वहाँ पे ये तीन लफ्ज लिखे होते हैं उसूली पैगाम।
4: अशताक भाई वो तो पैगाम मैंने आई थिंक, मुझे याद नहीं है अभी,
0: अच्छा
4: के मैंने पढ़ा है, लेकिन बहुत सारी बातें हैं कायदे आजम ने कही है, लेकिन अशताक भाई
0: आपने सुनी नहीं वो अलग बात है।
4: जी
0: आपने सुनी नहीं और याद नहीं रखी वो अलग बात है।
4: हाँ बिल्कुल वो अलग बात है, क्योंकि देखिए अशताक भाई कायदे आजम ने हमें आजाद करवाया है
0: जी,
4: लेकिन हम अपने आप को भी आजाद करें
0: जी,
4: और हम सुधरे तो इंशाल्लाह हमारा मुल्क जरूर तरक्की करेगा। और हम देखें साहब भाई, आज वो दौर चल रहा है कि हम छोटों का अदब नहीं करते हैं
0: बिल्कुल,
4: और उनसे प्यार नहीं करते हैं
0: जी,
4: तो वो हमारी कहाँ से अदब करेंगे।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल इरफान, आपने बहुत अच्छी बातें की।
4: उन्होंने ढंग का प्यार क्यों है वलन जीत क्यों,
0: एग्जैक्टली मां पढ़े
4: तमाम न कंदो साहब भाई, ॾिसो तमाम मुखा वॾा आहियो, तव्हां मूंखां प्यार न कंदो।
0: एग्जैक्टली गिव एंड टेक जो ज़मानो आहे, तव्हां इज़त ॾींदो त इज़त वठंदो बि सही, सभु ॾींदा इहो पैगाम। अच्छा इरफान मां गानो थो हलायां, ऐं जेको मां तव्हांखे सवाल कयो त क़ाइदे आज़म जो मशहूर असूली पैगाम कहिड़ो हुयो, त उहो आहे इतिहाद ईमान ऐं तंज़ीम।
4: बिल्कुल
0: हाँ,
4: ये टई शयूं असां में हुजनि,
0: असां में हुजनि। अच्छा इरफान इहो डेडिकेट कंहिंखे कंदो, मुख़्तिया शरीफ़
4: अलाह प्रोग्राम जो टाइम घटि हूंदो आहे इलाही, लेकिन ॻाल्हाइण लाइ दिलि इलाही चवंदी आहे, ऐं असां मुस्लमान मुल्कनि जे हिसाब सां इतिहाद कयूं था, पर अलाह करे त कंहिं ते ॾुखियो वक़्तु न अचे, पर ॾुखे वक़्त खां अचण खां पोइ असांखे इतिहाद छोड़ियूं न।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
4: ऐं असां भले दोस्त बि हिक ॿिए जा छो न हुजूं, असां हिक ॿिए सां दोस्ती बरक़रार रखूं, ॾुखे ऐं सुठे वक़्त में इशताक भाई ऐं सलाम सिस्टर मिसिस अली, सिस्टर फौजिया फरज़ाना, सिस्टर दुआ खान, उन खां पोइ रायपुर मुमताज़ कुमरो, गुलाम मुसाबन, हुसैन बकी विस्तरो, अब्दुला बंगवार, बचन तमान, नज़ीर मंगरो, जेके दोस्त ॿुधंदा सभिनी खे इरफान अली चइबो पारां फड़क फड़क सलाम।
0: वालेकुम अस्सलाम इरफान थेबो, थैंक यू सो मच, हमेशा खुश रहे, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। हमारे साथ इरफान थेबो, और अब हम चलाते हैं बहुत प्यारा सा गाना, मुख्तियार सिद्दीकी की फरमाइश पर, सुनिए और हमारे साथ रहिए।

0: 6:30 PM. This time check is brought to you by.
1: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्श अपनाए. आर्श ब्यूटी क्रीम, एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में. डार्क स्पॉट्स, एक्ने एंड

0: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवां जी स्किन के बनाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ बिन डीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म ऐं डी कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डीहन जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
1: हक सच जो आवाज गीत संगीत जो आवाज जी हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज बुधंदा रहो
2: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज
3: उसी खित्ते की बनी है आवाज
2: जी FM नेटवर्क
3: सिंध की आवाज

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

अपनी सां लाइन ते गॾु केर आहे? हैलो, अस्सलाम वालेकुम। हैलो हैलो जी, मुझे ख्याल में सिग्नल नथा अचनि, मुंहिंजी आवाज़ बनी रही हूंदी, हुन जी आवाज़ अदेजी नथी अचे, पर कोई ॻाल्हि न आहे, असां हलायूं था हिकिड़ो ज़बरदस्त ट्रैक, न रहंदे तूं न रहंदुसि मां। इन हिट नंबर खे ॿुधो ऐं अशफाक नियाज़ी सां गॾु रहो पंहिंजे शो आई लव यू ऑल में।

0: It's 6:45 PM. This time check is brought to you by
1: Bank Islam ne laya Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
2: Pakistan ki zyada tar zameenein phosphorus ki kami ka shikar hain. Isiliye sona laya hai NPS. Teen ki taqat ke saath. Isme maujood phosphorus de jadon ki barhotri aur phailav mein izafa aur sulfur nitrogen ki afadiyat ko badhaye jisse fasal ko ibtidai marhale se hi zaruri ghizai ajza mile. इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा. तीन की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले.
3: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज. बदलता रहो.
4: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
5: उसी खित्ते की बनी है आवाज.
4: जीए FM नेटवर्क,
5: सिंध की आवाज.

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: ब्रॉट टू यू बाय
2: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए।
3: सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन चयो तो लोड शेडिंग पानी बिजली वाली वजारत की ना हिली है पाकिस्तान में गवर्नेंस की नाकामी जो आला तरीन मिसाल है। हेस्को सेपको ए के इलेक्ट्रिक जड़ा इदारा आवाम के बुनियादी सहूलतू डेण में नाकाम थी चुका आहन। सिंध में 18 कलाक बिजली बंद कई वे थी यो मसली ए सेनेट में भी भरपूर अंदाज में उथारो वे रुगो बिजली न पर आवाम के गैस ए पानी जहा मसला भी दरपेश आन। स्पीकर बिजली कंपनीज के सरबराहन के घुराने की हिदायत कंदे घरू वजीर के इन अमल अमल अवा के तकलीफ़।

0: महांगाई सटियल अवाम मथां अॼु बि पेट्रोल बम किराइण जूं तयारियूं। ईंदड़ टिन ॾींहनि लाइ डीज़ल 5.28 रुपया ऐं पेट्रोल 5.02 रुपया फी लीटर महांगो थियण जो इम्कान। पेट्रोलियम डिवीज़न पारां अॼु राति 9 अघनि जो नोटिफिकेशन जारी थींदो। ज़रियनि जो चवण आहे त पेट्रोल ऐं डीज़ल जे अघनि जो तौइन सूमर ॾींहं ताईं लाइ कयो वेंदो।
1: बाउल हक ने आखिरी तरमीम में आईन को बदला और उसमें होता था कि जो नेशनल असेंबली सूबों की अगर उन्होंने बाउंड्रीज चेंज करनी है उसका कोई आईनी तरमीम से ही हो सकती है। उसके अलावा अगर ऐसी कोई आईनी तरमीम करनी है तो वो पास नहीं कर सकती जब तक सूबा उसके हक में उस डिवीजन के या जो भी हक में 2/3 एक्सेंबली के साथ एक करारदाद पास न करे। ये पहले था, अब उन्होंने क्या कर दिया, कहा कि जी पास भले कर दे लेकिन सदर उस पर दस्तखत नहीं कर सकते जब तक 2/3 मेजोरिटी से कोई सूबा उस पर रेजोल्यूशन ना पास करे। मेरा ख्याल है ये बहुत गलत तरमीम थी। ये कैसे हो सकता है कि सूबाई असेंबली नेशनल असेंबली की पास किए हुए कानून को सूबाई असेंबली रिजेक्ट कर दे? ये तो जियाउल हक ने इस आईन के अंदर ये अजीबो गरीब शिक डाल दी कि नेशनल असेंबली पास कर ले उसके बाद सूबा जो है वो उसको रिजेक्ट कर दे। ये गलत है, मेरा ये ख्याल है कि इसको दुरुस्त होना चाहिए।
0: सूबनि जी सरहदनि बाबति क़ौमी असेंबली आईनी तरमीम नथी करे सघे। तरमीम लाइ सूबाई असेंबलीअ मां 2/3 जी अक्सरियत ज़रूरी आहे। ज़ियाउल हक 8 तरमीम ज़रिए आईन खे तब्दील कयो हो जंहिंखे दुरुस्त थियण घुर्जे। सूबनि जी सरहदनि में तब्दीली बाबति क़ौमी असेंबली तरमीम नथी करे सघे। सदर बि तरमीम ते सूबे जी मंज़ूरी बिना सही नथो करे सघे। कराची में मीडिया सां ॻाल्हाईंदे वॾे वज़ीर मुराद अली शाह चयो त जेकॾहिं क़ौमी असेंबली सिंध जे विरहाङे बाबति को ठहराउ मंज़ूर कयो त सिंध असेंबली पहिरें ई अहिड़ी ठहराउ खे रद्द करे चुकी आहे। सिंध जे माण्हुनि बि पंहिंजो फ़ैसिलो ॿुधाए छॾियो ऐं असां सिंध जे अवाम सां गॾु बीठल आहियूं।

टारगेट किलिंग ऐं स्ट्रीट क्राइम में घटिताई रेंजर्स जे कार्रवाइनि जो नतीजो आहे। पाबंदी मंडल तंज़ीमनि जूं सरगर्मियूं ऐं रूपोस जवाबदार सिक्योरिटी लाइ ख़तरो आहिनि। अमुन अमान अवाम जी जान ऐं माल जे तहफ़ुज़ लाइ रेंजर्स जी मौजूदगी तमामु ज़रूरी आहे। सिंध असेंबली रेंजर्स जी सूबे में मुक़ररी वारे मुदे में हिक साल जे वाद जो ठहराउ मंज़ूर करे वरितो। ठहराउ जे मतन में चयो वियो आहे त रेंजर्स पुलिस सां गॾु इंटेलिजेंस बुनियादनि ते थींदड़ ऑपरेशन्स में अहम किरदार अदा कयो। सिंध में 20 जुलाई 2026 खां 19 जुलाई 2027 ताईं रेंजर्स मुक़रर रहंदी। सिटी काउंसिल कराची सिंध में नवां इंतज़ामी यूनिट्स ठाहिण ख़िलाफ़ ठहराउ मंज़ूर करे वरितो। मेंबर्स चयो त सिंध हिकु हुई, हिकु आहे ऐं सदाई हिकु ई रहंदी। ॿोली जे बुनियाद ते नफ़रतुनि खे हथी न ॾिनी वेंदी। कराची खे सूबो ठाहिण ऐं इंतज़ामी यूनिट्स जूं ॻाल्हियूं कंदड़नि जो माज़ी लसाणी बुनियादनि ते ॿधल आहे। जमात इस्लामी जे मेंबरनि जो ज़मीननि जे मामले ते एहतजाज। डेस्क ते बीहारे नारेबाज़ी। मेयर मुर्तज़ा वहाब ऐं डिप्टी मेयर सलमान अब्दुला मुराद इजलास छॾे रवाना थी विया। मुर्तज़ा वहाब जो चवण हो त ॿुधायो वञे त नूरुल हक़ इदारो कंहिंजी ज़मीन ते ठहियल आहे। हीअ उहा मुनाफ़िकत आहे जंहिं ख़िलाफ़ आहियां। मुनाफ़िकत खे वाइको कयो वेंदो। पीटीआई जमियत उलमा इस्लाम खे 27 सेप्टेम्बर वारे लांग मार्च में शिरकत जी दावत ॾेई छॾी। चेयरमैन बैरिस्टर गोहर जी क़यादत में पीटीआई वफ़द जी जेयू ऐं सरबराह मौलाना फज़लुर रहमान सां मुलाक़ात। 27 सेप्टेम्बर वारे मार्च कानून जी

यमनी हूसिन पारां सामूंडी गुज़रगाह बाबुल मंदर ते कब्ज़ो करण जी दावा। आलमी वापार में वॾी रंडक पैदा थियण जो ख़दशो। यमनी हूसिन मूजिब बाबुल मंदर वेझो अल अमेरी फ़ौजी अॾे ऐं ज़क्कर बेट ते कंट्रोल करे वरितो आहे। हाणे बाबुल मदद खे बंदि करण जो अख़्तियार बि हूसिन वटि आहे।

अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प यमनी ह्यूस्टन खिलाफ कार्रवाई करण वाली सऊदी अरब की दरख्वास्त रद्द करे छी। अमरीकी न्यूज वेबसाइट एग्जिविस मूजिब सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान सदर डोनाल्ड ट्रम्प से फोन से राबतो कर ह्यूस्टन खिलाफ कार्रवाई की दरख्वास्त कई हुई जका डोनाल्ड ट्रम्प रद्द करे छी है। ट्रम्प इंतजामिया मूजिब अमरीका रुगो सऊदी अरब के यमन में हदफन बाबत जान फराम कद वॉशिंगटन जो ह्यूस्टन खिलाफ इन वक्त फौजी कार्रवाई जो इरादो न है। अमरीकी सदर ईरान जंग पंजे सदारती दौर में खत्म थियण लाइ पुरम आहिनि। डोनाल्ड ट्रम्प चयो त ईरान जंग डिघे मुदे ताईं जारी रहण जो इम्कान न आहे।

0: विरार रोड में फ्लोर मिलते जज जो छापो, पुलिस पारा नाक बांधी बणायल नौजवान बासियाब। बांधी बणायल नौजवान जे चाचे तालिब शहर की दरख्वास्त से छापो हणी नौजवान फजल करीम शहर के बासियाब कराया वो। दरख्वास्त में मौकफ अख्तियार किया वो तो एस एच ओ विरार रोड गुलाम मुस्तफा मीरानी नौजवान के बिना जवाब बांधी बणाय रिश्वत तलब कई है। विरासिटी वेझो औरत के अगवा करे बिन महीनन तई लजा लुट करण जो इंकशाफ केस दाखिल। गोठ एजाज सोलंगी मां औरत के धीए समेत अगवा कयो वियो हो। औरत मूजिब गोठ भरसा गाह लाए वयस्त जवाबदार अब्दुल रहमान सोलंगी, मुर्तजा सोलंगी ए लायक सोलंगी अगवा कयो ए बिन महीनन तई ज्यादती जो निशानो बणाईंदा रहा। मौसमियात खाते आचर खा सिंध के मुख्तलिफ शहर में तेज बरसात की अगकथी कर छी। मौसमियात खाते मूजिब थरपारकर, उमरकोट, मीरपुर खास, बदीन, ठठो, सिजावल ए टंडो मोहम्मद खान में 13-16 सेप्टेम्बर दौरान किथे तेज तो किथे हल्की बरसात पैजी सके थी। कराची डिवीजन में 14-15 सेप्टेम्बर से बरसात जो इम्कान है।
1: Czekajcie, regulujcie. Chcemy zasad, chcemy prawa, chcemy zasad, chcemy prawa. Czas na prawo.
0: ऐं पोलैंड में 30 खां वधीक रोबोट्स जो एहतजाज। एआई बाबति मज़बूत कानून साज़ी करण जो मुतालबो। वारसा में डिजिटल अफेयर्स जे वज़ारत ॿाहिरां 30 खां वधीक रोबोट्स एहतजाज कयो। एहतजाज कंदड़ रोबोट्स जे हथनि में प्ले कार्ड्स ऐं झंडा हुआ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बाबति कानून साज़ी करण जो मुतालबो।
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है। सुनते रहो GAFM 91.6।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बदलता रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: तो मेरा फैन।
1: व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। व्हाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
3: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
4: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
3: जीए FM नेटवर्क,
4: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खिते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज, उधर रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए एफएम नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खिते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।

पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर की।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए एफएम नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: ब्रॉट टू यू बाय
2: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए
3: इलाके में बिन कलाकन का वधिक लोड शेडिंग न कई वजे

0: सिंध असेंबली जे मेंबर्स जो सिंध में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग खिलाफ एहतजाज। स्पीकर अवेस कादर शाह समूरन बिजली कंपनीज के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स के 23 सेप्टेम्बर से कमेटी इजलास में घुराने की हिदायत कर छी। सीनियर वजीर शर्जील मेमन तो लोड शेडिंग पानी बिजली वाली वजारत की नाअहली ए पाकिस्तान में गवर्नेंस की नाकामी जो आला तरीन मिसाल है। हैस्को सेपको ए के इलेक्ट्रिक जड़ा इदारा आवाम के बुनियादी सहूलतू दियण में नाकाम थी चुका है। सिंध में 18 कलाक बिजली बंद कई वे थी। यो मसलो कौमी असेंबली ए सेनेट में भी भरपूर अंदाज में उथारो वे रुगो बिजली न पर आवाम के गैस ए पानी जहा मसला भी दरपेश है। स्पीकर बिजली कंपनी से सरबराहन के घुराने की हिदायत कन्दे घरू वजीर के अमल दरामद अमलदार न आया तवा के तकलीफ दींदी। कराची के इलाके औरंगी टाउन में स्कूल की भेतक किरण के नतीजे में 5 जणा दबजी फौत, 2 जख्मी। सेक्टर 11 एल ब्लॉक में स्कूल की भेतक किरण से मलबे हेठा दबजी वेल 5 जणन जा लाश ए बिन जख्मी के कढ़ो वो। एसएसपी वेस्ट है तो सरकारी स्कूल जबून हाल हो, मवाली सरको कढ़ी रहा हुआ तो भेत किरी पई। वडे वजीर मुराद अली शाह पारा भेतक किरण सब जानू जया थे दुख जो इजहार। जख्मी के इलाज जो बेहतर सहूलत फराम करने की हिदायत।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
3: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, GA हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बदलता रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए एफएम नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: GA FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर
2: बनी है
1: जीए एफएम नेटवर्क
2: सिंध की आवाज़।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: ब्रॉट टू यू बाय
2: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए।
3: कानून को सुबह से रिजेक्ट कर दे, ये तो जियाउल हक ने इसका आईन के अंदर ये अजीबो गरीब शिक डाल दी कि नेशनल असेंबली पास कर ले, उसके बाद सूबा जो है वो उसको रिजेक्ट कर दे। ये गलत है, मेरा ये ख्याल है कि इसको दुरुस्त होना चाहिए।
4: सूबन जे सरहदन बाबत कौमी असेंबली आईनी तरमीम नथी करे सके, तरमीम लाए सूबाई असेंबली मां ब भांगे टे जी अक्सरियत जरूरी आहे। जियाउल हक अठी तरमीम जरिए आईन के तब्दील कयो हो, जंहिं खे दुरुस्त थियण घुर्जे। सूबन जे सरहदन में तब्दीली बाबत कौमी असेंबली तरमीम नथी करे सघे, सदर बे तरमीम ते सूबे जी मंजूरी बिना सही नथो करे सघे। कराची में मीडिया सां ॻाल्हाईंदे सिंध जे वॾे वज़ीर सैयद मुराद अली शाह जो चवण हो त जेकॾहिं क़ौमी असेंबली सिंध जे विरहाङे बाबति को ठहराउ मंज़ूर कयो त सिंध असेंबली पहिरें ई अहिड़े ठहराउ खे रद्द करे चुकी आहे। सिंध जे माण्हुनि बि पंहिंजो फ़ैसिलो ॿुधाए छॾियो आहे ऐं असां सिंध जे अवाम सां गॾु बीठल आहियूं। वज़ीर आज़म मुल्क में बिजलीअ जी लोड शेडिंग जो नोटिस वरितो, कंहिं बि इलाइक़े में ॿिनि कलाकनि खां वधीक लोड शेडिंग न करण जी हिदायत। बिजली जे लोड मैनेजमेंट ते जाइज़ा इजलास दौरान शहबाज शरीफ बिजलीअ जी लोड शेडिंग ते कावड़ जो इज़हार कंदे चयो त कंहिं बि इलाइक़े में ॿिनि कलाकनि खां वधीक लोड शेडिंग न कई वञे। सिंध असेंबली जे मेंबर्स जो सिंध में बिजलीअ जी बदतरीन लोड शेडिंग ख़िलाफ़ एहतजाज। स्पीकर अवेस कादर शाह समूरनि बिजली कंपनीज जे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स खे 23 सेप्टेम्बर ते कमेटी इजलास में घुराइण जी हिदायत करे छॾी। सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन चयो त लोड शेडिंग पाणी बिजली वज़ारत जी नाअहली ऐं पाकिस्तान में गवर्नेंस जी नाकामीअ जो आला तरीन मिसाल आहे। हेस्को सेप्को ऐं के इलेक्ट्रिक जहिड़ा इदारा अवाम खे बुनियादी सहूलियतूं ॾियण में नाकाम थी चुका आहिनि। सिंध में 18 कलाक बिजली बंद कई वञे थी, इहो मसलो क़ौमी असेंबली ऐं सेनेट में बि भरपूर अंदाज में उथारियो वञे। रुगो बिजली न पर अवाम खे गैस ऐं पाणीअ जा मसला बि दरपेश आहिनि। स्पीकर बिजली कंपनीज जे सरबराहनि खे घुराइण जी हिदायत कंदे घरू वज़ीर खे चयो त उन ते अमलदार न आया तव्हांखे तकलीफ़ ॾींदासीं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप यमनी हुसैन ख़िलाफ़ कार्रवाई करण वारी सऊदी अरब जी दरख़्वास्त रद्द करे छॾी। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्ज़ेविस मूजिब सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान सदर डोनाल्ड ट्रंप सां फोन ते राब्तो करे हुसैन ख़िलाफ़ कार्रवाई जी दरख़्वास्त कई हुई, जेका ट्रंप रद्द करे छॾी। ट्रंप इंतिज़ामिया मूजिब अमरीका रुगो सऊदी अरब खे यमन में हथफनि बाबति ॼाण फराहम कंदो। वॉशिंगटन जो हुसैन ख़िलाफ़ हिन वक़्तु फ़ौजी कार्रवाई जो इरादो नाहे। यमनी हुसैन पारां सामूंडी गुज़रगाह ते कब्ज़ो करण जी दावा, आलमी वापार में वॾी रंडक पैदा थियण जो ख़दशो। यमनी हुसैन मूजिब बाबुल मदब वेझो अल अमीरी फ़ौजी अॾे ऐं ज़कर बेट ते कंट्रोल करे वरितो आहे। हाणे बाबुल मदब खे बि हुसैन वटि आहे। अमरीकी सभा में डोनाल्ड ट्रंप चयो आहे त ईरान जंग डिघे मुदे ताईं जारी रहण जो इम्कान आहे।

टारगेट किलिंग ऐं स्ट्रीट क्राइम में घटता थी जो जवाबदार सिरो आहिनि। जामनी रेंजर्स जे सूबे में मुक़रर कसाल जी वाद जो ठहराउ मंज़ूर करे वरितो। ठहराउ जे मतन में चयो वियो आहे त रेंजर्स पुलिस सां गॾु इंटेलिजेंस बुनियादनि ते थींदड़ ऑपरेशन में अहम किरदार अदा कयो आहे। सिंध में 20 जुलाई 2026 खां 19 जुलाई ताईं रेंजर्स मुक़रर रहंदी। कराची सिंध में नवा इंतजामी यूनिट्स ठाहिण ख़िलाफ़ ठहराउ मंज़ूर करे वरितो। मेंबर्स चयो त सिंध हिकु हुई, हिकु आहे ऐं हमेशा हिकु ई रहंदी। ॿोली जे नवा इंतज़ामी यूनिट्स ठाहिण

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 90।
2: GA हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज बदलता रहो।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए एफएम नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

जडहें शाम पाछन के वेढ़े छदे, जडहें दर्द यादूं सहेड़े छदे। जडहें शाम पाछन के वेढ़े छदे, जडहें दर्द यादूं सहेड़े छदे, तडहें चंड रखे तूं न्यापो कजा, अन्या हसरतन जा दिया था बरन। जडहें शाम पाछन के वेढ़े छदे, जडहें दर्द यादूं सहेड़े छदे, तडहें चंड रखे तूं न्यापो कजा, अन्या हसरतन जा दिया था बरन। अंदर खे आसरा अन्या ताई था रहन, अंदर खे आसरा अन्या ताई था रहन, असा वक्त जी चीच नाहे छड़ी, हली आओ जाना, जिंदगी एडी नाहे वड़ी।

वेलकम बलिकार दिलजीगाल प्रोग्राम संगत अब चौहान अवाजी खिदमत में हाजिर है अवासा खोर सारू कचहरियो कबियो दिल जो गालियो कबियो उन सा गरो गर अवाजू फरमाइशू भी प्रोग्राम में शामिल कबियो असा अवाजी कॉल जो भी इंतजार कदाऊ अवाजू कॉल जो शिकायतू हुंदी तो कॉल अटेंड नाहे कई वेंदी या तो कॉल अटेंड घट कई वेंदी आहे सो उन जो रिप्लाई यो ही आहे ता असा पाण मुंतजर हुंदाऊ अवाजी कॉलिंग जा अवाजी कॉल खां बिना असा प्रोग्राम अधूरो आहे हा फकत असा अवां सां पहिरियां 15 मिंट मुखातिब थींदाऊं जंहिं में प्यार भरी पोएट्री अवां दोस्त बि उमाणे सघो था असांखे जेकॾहिं पंहिंजी पसंदि जी चूंड पोएट्री या कुझु शायर दोस्त हज़रात जेकॾहिं ॿुधी रहिया आहिनि असां प्रोग्राम त उहो असांखे SMS वसीले पिण जेको आहे त शायरी मोकिले सघनि था उन सां गॾो गॾु असांजे लाइव कॉल ते पाण बराह रास्त ख़ुदि जेको आहे त उहा पंहिंजी शायरी असांखे प्रोग्राम में शामिल करे सघनि था।

प्रोग्राम का आगाज एक खूबसूरत ट्रैक से करेंगे और वो ट्रैक है पाकिस्तान के जाने माने सिंगर अली जफर का और बहुत ही सुरूर दिल को छू लेने वाला ट्रैक। आओ मिलके एंजॉय करें दिल की बात में अली जफर का खूबसूरत गीत।

वेलकम बैक। इतने बेजान सहारे तो नहीं होते ना, इतने बेजान सहारे तो नहीं होते ना, दर्द दरिया के किनारे तो नहीं होते ना। इतने बेजान सहारे तो नहीं होते ना, दर्द दरिया के किनारे तो नहीं होते ना।

0: रंजिशें हिजर का मयार घटा देती हैं, रंजिशें हिजर का मयार घटा देती हैं, रूठ जाने से गुजारे तो नहीं होते ना। रास रहती है मोहब्बत भी कई लोगों को, रास रहती है मोहब्बत भी कई लोगों को, वो भी अर्श से उतारे तो नहीं होते ना। होंठ सीने से कहां बात छुपती रहती है, होंठ सीने से कहां बात छुपी रहती है, बंद आंखों से इशारे तो नहीं होते ना। हिजर तो मोहब्बत को और बढ़ा देता है, अब मोहब्बत में खसारे तो नहीं होते ना। एक शख्स ही होता है मताए जाने भी दिल में, एक शख्स ही होता है मताए जाने भी दिल में, अब लोग भी सारे तो नहीं होते ना। वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद, सुनते रहें GAFM नेटवर्क।
1: It's 9:30 PM. This time check is brought to you by.
2: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्श अपनाए, आर्श ब्यूटी क्रीम, एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स, एक्नी एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडियंट, स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो। आर्श ब्यूटी क्रीम।
3: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
4: यार मछा क्या किथे वन्या, घर में बैठो यहाँ पर ठीक ही नया, शायद मुझे जिंदगी लायक दवाई नहीं थी।
5: छो भला साथ छुआ तुखे, साफ साफ बुधा मसलो छाए।
4: यार एक मसलो हुजे तब बुधाया, मुझे ते मसलन जी कतार लगल है, न भूख सही लगे थी, ऐसे कुछ भी खावा थो तो हजम ही न थो थे, पेट फूक जी वने थो, हथ पेर सुन थी वन था, सजो ढी सुस्ती महसूस थे थी, कह कम जो रहंदो ही नाया।
5: यारे तुझा घणा न, बस हिक ही मसलो आ।
4: हिक इहो किए?
5: हाँ तुझो मैदो खराब आ, छा तो न बुधो आ, मादो दुरुस्त त इंसान दुरुस्त, जे मादो सही न होंदो त भुख भी न लगंदी, न हाजमो थींदो आई न ताकत मिलंदी।
4: तो पो मां छा कया?
5: सोलो हलाहे इस्तेमाल कर शिफाए मैदा कोर्स, ए कुदरती जुजन मां तैयार कैल कोर्स, तुझे जिस्म जो हिस्सो बन जी, तुझे मैदे के बिल्कुल ताजो आई मजबूत करे छींदो, भुख खुली वेंदई, खाधो सुठे नमूने हजम थींदई, पेट भूख जण खत्म, सुस्ती खत्म, जिस्म में ताकत ईंदई।
4: वाह यार वाह जी, गाल बुधाई थी, पर ही किथे मिलंदो?
5: यो मिलंदई बेड़ी चौक नादरा ऑफिस जे सामू अल नूर दवाखाना रोड़ी, आई राबते जे लाए नंबर भी अथई 0305-58-00-616। शिफाए मैदा कोर्स, मैदो दुरुस्त त इंसान तंदुरुस्त। सखर और गिर्दो नवा की गरीब आवाम के लिए खुशखबरी, आंखों का मुफ्त इलाज उनकी दहलीज पर, मुर्शिद सगोरा बाबा शेख भजन साहब की 92वीं सालगिरह की खुशी में आंखों का मुफ्त कैंप, जहां मिले तमाम मरीजों को मुफ्त चेकअप, मुफ्त ट्रीटमेंट, मुफ्त दवाएं, मुफ्त ऑपरेशन, मुफ्त एनकें, सब कुछ मुफ्त, बस खिदमत का मौका दें। याद रहे 16 सितंबर बरोज बुध सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, अल शिफा ट्रस्ट आई अस्पताल और बालाईसिंध के मशहूर आंखों की बीमारी के माहिर डॉक्टर ओम प्रकाश मंगलानी आपकी खिदमत के लिए मौजूद होंगे। एड्रेस हिंदू पंचायत अस्पताल, म्यानी रोड, सखर। राबता 0333-7125-706, 0333-7134-147 और 0300-3123-267।
6: क्या आप अपना पैगाम हजारों लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं? चाहे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के एडमिशन हो, किसी हॉस्पिटल या क्लिनिक, बिजनेस के प्रमोशन, जॉब वैकेंसीज, public announcements, events, seminars, special offers, sponsored programs, live mentions or customized promotional campaigns ya kisi bhi kisam ke advertising campaign. GFM hai aapka bharosemand media partner. Apni advertising ko dijiye zyada reach, behtar impact aur maasir natije. Advertising aur booking ke liye aaj hi raabta kare. Station manager Babir Sheikh 0300 9319 667.
7: अवां जी स्किन डल ए बेरोनक लगे थी हाने पेजी स्किन के दियो एक नव गिलो पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम अवां जी स्किन के बनाए फ्रेश सॉफ्ट ए ग्लोइंग इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो दी अवां के रेडिएंट लुक रोजानो जे इस्तेमाल सा हर किस्म जी स्किन जे लाए परफेक्ट हाने थियो खूबसूरत थियण वधिक आसान वाइट एज ब्यूटी क्रीम खूबसूरती जेका चमके हर डी बेहतरीन रिजल्ट हासिल कर लाए वाइट एज ब्यूटी क्रीम सा गड इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप वाइट एश ब्यूटी सोप सा मिले चमकदार निखार ताजगी सा गड वाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
8: अमां जो गाड़ी खरीद करण जो इरादो आहे
9: या पंहिंजी पुरानी गाड़ी विकिणण चाहियो
8: था
9: सुज़ुकी ऐं जिन में जापानी ऐं हाइब्रिड गाड़ियूं
8: तंद ज़रूर जी चूंड में बेहतरीन सहकार
9: विकिणण
10: हक 6.6
11: जिस घर पर लाल शहर
12: सी खत्ते की बस
11: जी
12: सिंध की आवाज़

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खिते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: Hello. मदद कयूं कॉल अटेंड कोन थी सघी असांखे बि कॉल अची रही आहे असां कोशिश कंदासीं कॉल शामिल थी वञे अवांजी कॉल असां लाइ बेहद इम्पोर्टेंट हूंदी आहे अस्सलाम वालेकुम केर साईं किथां खां हैलो हैलो हैलो मदर खाऊं अवांजो आवाज़ कोन पियो अचे कनेक्ट थियो मुंहिंजा
1: भाउ
0: रब ॾिनो फुलपोटो राज़ी ॻोठ खैरपुर मीरस खां वेलकम भलीकार ख़ुशावदीद प्यारा प्रोग्राम में ॿुधायो ठीक ठाक ख़ैरियत जी छा चवणु चाहींदो का दिलि जी ॻाल्हि को प्यार जो पैगाम असां हिन प्रोग्राम में कोशिश कंदा आहियूं त अव्हां जे दिलि जूं ॻाल्हियूं को ॿुधूं का नई ॻाल्हि ॿुधूं को नओं पैगाम ॿुधूं को
1: पोएट्री ॿुधूं शायरी
0: जी वाह वाह क्या बात लाजवाब लाजवाब दोस्तनि जा के नाम शामिल करणु चाहींदो
1: बिल्कुलु कंदासीं अगर मोहम्मद शेख आहे
0: जी
1: गुलाम हैदर खरपोत्रो आहे ऐं अली मोहम्मद बंबरो आहे
0: जी
1: अॼु सभिनि तरीन प्यारा जेसिताईं ॿुधण लाइ जेसिताईं आवाज़ वञे त सभिनि भेनरुनि ॿाहिरनि खे सलाम ऐं जलाल जो लाॾो ॿुधाइजोसीं
0: जलाल जो ॿुधाईंदासीं गीत ॿुधाईंदासीं
1: लाॾो महिरबानी
0: सर प्यारा कुर्ब लव यू लक लाइक
1: महिरबानी

0: जी दोस्तों, मैक्सिमम कॉल्स अटेंड कंदा से अमा के असा मुसलसल वेट करायो से हियर अमा जो कॉल्स अचन पियो। अस्सलाम वालेकुम, केयर साईं के था का?
1: वालेकुम अस्सलाम
0: जी। अदा केयर अदा
1: अब्दुल शकूर इंदर।
0: अब्दुल शकूर इंदर साहब के था पे गला पन्नो आकिल।
1: जी जी,
0: वेलकम भरी कार प्यारा।
1: हेलो
0: जी, दा चवण चाहिंद हाँ
1: घर सजाने के बार पर हम तेरा नाम।
0: क्या बात है, क्या बात है, वाह सही वाह, लाजवाब लाजवाब।
1: याद आया, याद आया कभी खुद खुद आए कभी हम
0: हाँ
1: मोहब्बत किया।
0: अच्छा
1: ठीक है सर।
0: जी जी लाजवाब,
1: मेहरबानी। कलाम बुधराए शमन जो
0: शमन जो कलाम हलाईंदा को दोस्तन जा नाम शामिल करण चाहिंदो
1: दोस्त
0: के साथ। वालेकुम सलाम। कुर्ब लख लाइक
1: जरूर बुध।
0: जी जी

0: जी दोस्तों कॉलर असां गॾु लाइन ते मौजूद आहिनि, कॉल अटेंड कंदासीं। अस्सलाम वालेकुम, केर अदा किथां खां?
1: वालेकुम सलाम, अदा कहिड़ो हाल आहे, ख़ुशि आहियो?
0: एवन अलाह जा एहसान आहे, मां ॿुधायो ठीकु ठाक?
1: अलाह जो शुक्र आहे। घोट साबू देरो थरपारकर खां ॻाल्हायां थो, दिलीप कुमार मेघवाड़।
0: साबू देरो थरपारकर खां दिलीप कुमार मेघवाड़, वेलकम भलीकार प्यारा प्रोग्राम में।
1: घोट बाबू वेरो
0: थरपारकर, बाबू वेरो बाबू वेरो इहो किथे आहे?
1: छाछरे में।
0: छाछरे में, वाह वाह वाह, लाजवाब लाजवाब। वाह वाह, वॾी महिरबानी, वॾी महिरबानी।
1: गुलाब कितना,
0: हा हा हा, वो गुलाब कितना महफूज था कांटों की गोद में। हा हा हा हा, और लोगों की,
1: जब लोगों की मोहब्बत में आया तो पत्ता पत्ता बिखर गया।
0: अब भाऊ मार छोड़े, सफा कप छोड़े। हाँ याद कियो, दोस्तन साईं त आहे न जिंदगी, यारन साण बहार। जी
1: हाँ, लुटको मोरी सां गॾु में ॿुधनि पिया मोहम्मद साले लगारी, अब्दुलमान लगारी, वॾा नोटो रामचंद मकवाणो आहे
0: जी,
1: ऐं बाबू वारो थरपार करता दानिश कुमार सूरज दिल शंकरलाल मेघवाड़।
0: सॼी संगत खे मुंहिंजे तरफ़ां बि सलाम नमस्ते, हक़ मौजूद।
1: जी सदा मौजूद, वालेकुम सलाम।
0: वालेकुम सलाम, वॾी महिरबानी प्यारा, लव यू, थैंक यू।

हिनमहिल ताईं जो एतिरा असां कॉलर्स शामिल कया आहिनि, उन्हनि सभिनी जे नाओ शमन अली मीरालीअ जे ख़ूबसूरत आवाज़ में ट्रैक डेडिकेट कयूं था।

असीं निंड जा नैण आहियूं पिरी, असीं निंड जा नैण आहियूं पिरी, सुते साह सितारा नूर अथी, कतिन जा सवें काफ़िला रह गुज़र में।

0: आवाज फोन कॉल्स असा के मजबूर कन थी ट्रैक असा कंप्लीटली प्ले कौन कंदा से शामिल दोस्तन जो फरमाइशों भी थन्दी रहन अवा गाल बोल भी थन्दी रहे असा गद कॉलर मौजूद है लाइन ते कॉल अटेंड कंदा से अस्सलाम वालेकुम केर अदा के था का वालेकुम सलाम यास्मीन आप कैसी हैं
1: अल्लाह का
0: शुक्र आप सुनाया आज आपने स्टार्टिंग में ही उर्दू पोएट्री सुनी होगी अगर प्रोग्राम आप शुरू से सुन रही हैं तो
1: जी हाँ जी बिल्कुल सुनी
0: है जी जी जी क्या कहना चाहिए
1: वो मेरी जो किसी मैंने इसलिए मतलब होता है काल नहीं करती हूँ
0: अच्छा
1: मैं शुरू से सुन रही हूँ आपका तो हाँ
0: बड़ी मेहरबानी शुक्रिया शुक्रिया नवाजशें क्या कहना चाहिए
1: सिंधी समझ में आती है
0: सिंधी भी आती है समझ में
1: जी हाँ बिल्कुल
0: अच्छा जी तो सुना दें आज कुछ आज कुछ सुना दें कोई
1: सॉन्ग पर चला थोड़ा सा खबर नाम आ गया था बीच में
0: अच्छा आज कोई सुना दें हमें कोई सिंधी में शायरी या उर्दू में
1: आवाज अच्छी नहीं है भाई
0: शायरी के लिए गाना थोड़ी पड़ता है आप नसर में सुना दें ना नज़म में न सुना
1: एक शेर सुना
0: जी
1: शेर
0: सुना इरशाद
1: खिला ही रहता है हरदम गुलाब की सूरत
0: अच्छा
1: खिला ही रहता है हरदम गुलाब की सूरत आज आपका चमन की चीजों
0: क्या बात है क्या कहने लाजवाब
1: और आज अताउल्ला ईसा खेलवी का सुन सुनाइएगा
0: आज अताउल्ला ईसा खेलवी का कौन सा ट्रैक सुनना चाहेंगे
1: आओ तो सही
0: प्रोग्राम प्रोग्राम सुनती रहे शामिल लाजमी करेंगे
1: माशाल्लाह आपकी आवाज अच्छी है अल्लाह ताला आपको हमेशा सलामत रखे
0: बड़ी मेहरबानी नवाज से थैंक यू
1: मेरी तरफ से सब सुनने वालों को सलाम
0: वालेकुम सलाम थैंक यू बड़ी मेहरबानी

वक्त थियो आहे जो वरंदासीं वापसि कमर्शियल ब्रेक ऐं न्यूज़ खां बाद में ॿुधंदा रहो GFM नेटवर्क।

0: GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: brought to you by
2: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए
3: लोडशेडिंग ते कावड़ जो इज़हार कंदे चयो त कंहिं बि इलाइक़े में ॿिनि कलाकनि खां वधीक लोडशेडिंग न कई वञे।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
2: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, GA हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।